लीटर पेट्रोल ताई फी लीटर पेट्रोल ते 100 रुपया रिलीफ दिनो विंदो 800 सीसी ताई नंढियो गाड़ियों इस्तेमाल कंदड़न के मावा 30 लीटर पेट्रोल ताई फी लीटर ते 100 रुपया रिलीफ मिलंदो सब्सिडी हासिल करण लाइ रजिस्ट्रेशन जी शुरुआत थी वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त तेल जी क़ीमतनि में वाधि सबब अवाम ते पवंदड़ बार जो हुकूमत खे अहसास आहे। ॾुखे वक़्त में अवाम खे अकेलो न छॾींदासीं। हुकूमत पेट्रोल रिलीफ हासिल करण जो तरीक़ो ॿुधायो मैसेज ते REG लिखो पोए क़ौमी सुञाणप कार्ड नंबर मोटरसाइकिल नंढी गाॾी जा रक्षा जो रजिस्ट्रेशन नंबर सूबे जो पहिरियों लफ़्ज़ ऐं गाॾी जी रजिस्ट्रेशन जी तारीख़ लिखी 97/71 ते सेंड कयो। तसदीकी मैसेज अचण बाद पेट्रोल पंप वञण खां पहिरीं TO खे लिखी वरी 97/71 ते सेंड कयो ऐं टोकन हासिल कयो। पंप ते टोकन ॾेखारे सब्सिडी हासिल करे सघिजे थो।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ए सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने फोन ते राबतो सऊदी अरब ते हूसी बागिन के ताज़न हमलन की मज़म्मत वज़ीर-ए-आज़म पारा सऊदी अरब सां मुकमिल वधीअ जे अज़म जो इज़हार मौजूद हालतन में दानिशमंदान फैसलन ते सऊदी वलीअहद के खराज तहसीन पेश वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त हूसी बागिन जूं कार्रवायूं किथे जे अमुन ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो आहिनि। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी लाइ सूबन खां मदद घुरी वरती। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन पंजाब सिंध ए बलोचिस्तान हुकूमतन के खत लिखी छो 23,500 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब मां 15,000 सिंध मां 8,000 ए बलोचिस्तान मां 500 पुलिस एहलकार 20 सेप्टेम्बर ताईं इस्लामाबाद पहुंचाइण जी हिदायत। पंजाब में दहशतगर्दी जो खतरो कलम 144 लागू। पंजाब के घरू खाते पारा नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन मुताबिक सजे सूबे में 13 खां 17 सेप्टेम्बर ताईं कलम 144 लागू हूंदो। अवामी हंधन रस्तन शाहराहन ए खुलियल जायन ते 5 या उन खां वधीक माण्हुनि जे इजमा रैली जलसन ए मुज़ाहरन ते पाबंदी हूंदी। कानून लागू कंदड़ ऐं इंटेलिजेंस इदारनि तरफ़ां दहशतगर्दी जी इम्कानी खतरनि जूं रिपोर्टू मिलण सबब कलम 144 लागू कयो वियो आहे। भारत एक भेरो बीहर क्रिकेट के सियासत ए नफरत के वर चाड़े छो। एशिया टी20 कप के फाते भारतीय वुमेन टीम जो मोहसिन नकवी का ट्रॉफी वठण का इनकार। एशिया कप के फाइनल में भारतीय वुमेन टीम श्रीलंका के 72 रन शिकस्त डी। भारतीय टीम पेरी खेलंदी 183 रन ठायूं। स्मृति 59 ए शिफाली वर्मा 88 रन इनिंग खेडी नुमाया रहियूं। दिफाई चैम्पियन श्रीलंका की टीम 111 रन से ढेर। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो सदर मोहसिन नकवी फाइनल जो खास मेहमान हो। कायदनि ऐं ज़ाब्तनि मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल जो सदर कामयाब टीम खे ट्रॉफी ॾींदो आहे। भारतीय वुमेन टीम मोहसिन नकवीअ खां ट्रॉफी वठण खां इनकार करे छॾियो। मेन्स एशिया कप जी ट्रॉफी बि भारत पारां न वठण सबब सीसी जी ऑफिस कयल आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
4: जी हा, 2331-2525-786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

हूंदो आहे, रुपए ॿ रुपया उहे मथे बिल्कुलु रखंदा आहिनि, उहो हुनजो हिकड़ो महिनत आहे। बहरहाल जेको गवर्नमेंट जो अघु आहे, सरकारी अघु आहे, पेट्रोल जो फी लीटर जे हवाले सां, डीज़ल कोन पिया पुछूं, पेट्रोल अघु पुछूं पिया, त अॼु जेको अघु बीठल आहे, छो त जुमे ते जेको नओं रेट हुयो उहो हुयो, हुन ऑर्डर थियो गवर्नमेंट जो, त हिन वक़्तु जुमो छंछर आचर अॼु सूमरु आहे, त अॼु गवर्नमेंट जो सरकारी अघु पेट्रोल जो फी लीटर जे हवाले सां केतिरो आहे अव्हां खे ॿुधाइणा आहिनि सवा रुपया ऐं पैसा। अव्हां जेकॾहिं असांजो प्रोग्राम हींअर ॿुधो पिया या असांजा जेके नवां दोस्त प्रोग्राम में शामिल थियण चाहिनि पिया, त असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे ऐं SMS करण जो बिल्कुलु आसान तरीक़ो आहे। तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, तव्हां उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो, पंहिंजो नालो, पंहिंजे घोठ जो नालो, ऐं तव्हां सवाल जो सही जवाब लिखी करे 888 ते तव्हां सेंड कंदव, त असां ॾे सवाल पहुची वेंदो। जेकॾहिं असांजा नवां दोस्त प्रोग्राम फेसबुक ते ॿुधनि पिया, त असांजी ID आहे फेसबुक GFM88 जी ID आहे, असांजो फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं असांजे स्टूडियो में मोबाइल बि आन आहे, ऐं जेको आहे तव्हां मोबाइल ते बि कॉल करे पंहिंजे सवाल जो सही जवाब लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। साईं मुंहिंजा अॼु 14 सेप्टेम्बर आहे ऐं सुभाणे 15 सेप्टेम्बर आहे। सुभाणे याने 15 सेप्टेम्बर ते जमहूरियत जो आलमी ॾींहुं मल्हायो वेंदो, ऐं जमहूरियत जो आलमी ॾींहुं अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल ऑफ डे पंहिंजो हर साल 15 सेप्टेम्बर ते बेन अलाक़वामी पार्लियामेंट यूनियन जे तहत मल्हायो वेंदो आहे, ऐं हिन ॾींहं जी शुरूआत सन 2008 में थी अक़वामे मुतहिदा जे जनरल असेंबली में साल 2007 में पंहिंजी 62वीं सेशन जी एजेंडा नंबर 12 जी करारदाद नंबर 7/62 वसीले हिकु करारदाद मंज़ूर करे हर साल 15 सेप्टेम्बर वारे ॾींहं खे जमहूरियत जो आलमी ॾींहुं करे मल्हाइण जो ऐलान कयो। हिन ॾींहं जे मल्हाइण जो मक़सदु बेन अलाक़वामी तौर जमहूरियत पसंद जी हिमायत करण आहे ऐं मुल्कनि में हुकूमती सिध ते जमहूरियत खे वधण लाइ क़दम खणण आहे। त साईं मुंहिंजा इहा थोरी मालूमात तव्हां खे ॾिनी पंहिंजो जमहूरियत जे हवाले सां। हाणे वरी ख़ूबसूरत नगमो अव्हां जे नाम पिया कयूं।

जी समझ प्रोग्राम रोशन सुबह में असो सवाल नो आए था पेट्रोल जो सरकारी अघ फी लीटर केतरो आए जेको पहरे नंबर ते पंहिंजो सवाल जवाब ॾींदो उन जो पसंद जो कलाम भी असां हलाईंदासीं उन जो मुख़्तसर तारुफ़ बि असां प्रोग्राम में शामिल कंदासीं ऐं जेकॾहिं बाक़ी दोस्त सवाल जो सही जवाब ॾींदा त उन जा फॉर्मेलिटी तौरु बिल्कुलु नाला सां ज़रूरु खणंदासीं पर जेको पहिरें नंबर ते सवाल जो जंहिंजो सही जवाबु हूंदो पहिरें नंबर ते जंहिं कॉल कई हूंदी उन जो तारुफ़ बि मुख़्तसर हलाईंदासीं उन जे पसंद जो कलाम बि हलाईंदासीं अव्हां खे ॿुधाइणो आहे त पेट्रोल जो सरकारी अघु फी लीटर केतिरो आहे साईं मुंहिंजा उमिरि जे वधण ते घणो कुझु हिकु ई वक़्तु ऐं असां पंहिंजी खुराक ते वधण वक़्तु काबू रखंदा आहियूं ऐं मुतहरक रहण जी कोशिश कंदा आहियूं पर जॾहिं असां उमिरि जी हिकु ख़ासि सतह ते पहुची वञूं था त पंहिंजो वज़न काबू करणु ॾुखियो थी वेंदो आहे ऐं ताज़ो नई तहक़ीक़ यानी रिसर्च सबबि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जी केतिरा ई किलो वज़न वधण जो सबबि ॼाणण में मदद मिली आहे ऐं ॿाहिरनि मुल्कनि जे तहक़ीक़ाती इदारनि जो ख़्यालु आहे त उन जो जिस्मानी चर्बी में तब्दील जे अमल सां को वास्तो न हुजणु घुर्जे चर्बी ॻारण जो अमल इंसानी जिस्म जी उहा सलाहियत जंहिं खे चर्बीअ जो ज़खीरो चई सघे थो ऐं ज़रूरत मुजिबि उन खे ॻारे सघे थो साईं मुंहिंजा असांजे जिस्म में जेका वाद आहे जेको वज़न आहे उन में ख़ासि करे चर्बीअ जो वधी वञणु आहे असां पंहिंजी खुराक ते कंट्रोल कंदासीं असां पंहिंजे खाइण पीअण ते कंट्रोल कंदासीं त असांजो कोलेस्ट्रोल न वधंदो असांजी चर्बी न वधंदी ऐं चर्बी वधण सां असांजे जिस्म में काफ़ी बीमारियूं जनम वठंदियूं उहो तमामु घणो नुक़सानु आहे जेतिरो थी सघे त असां कोशिश करे पंहिंजा खाधा जेके आहिनि सब्जियूं इस्तेमालु कयूं ऐं खाधा अहिड़ा खाऊं जेके नुक़सानकार न हुजनि।

0: खूबसूरत ये जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़

0: ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
0: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सिक्योरिटी फोर्सेज जो कार्रवाइयों फितनल हिंदुस्तान जा टे दहशतगर्द मारजी वया सिक्योरिटी जरिए मौजूद दहशतगर्द जे गार्डन के क्वाड पार्टर जरिए निशानो बनाए वयो सिक्योरिटी फोर्सेज जो दहशतगर्द जे खात्मे तई कार्रवाई जारी रखने जो अज़म
4: पाकिस्तान विच ओभर में छिकटाण घटाइण लाइ किरदार अदा करे रहियो आहे गडि॒यल क़ौमनि में पाकिस्तान जी नुमाइंदी आसिम इफ्तिखार चयो आहे त मके मुआहिदे में पाकिस्तान इज़ाफ़ी ज़िमेवारियूं खणी रहियो आहे तस्लीम कयूं था त सूरतहाल बहितरी तरफ़ न पई अचे ईरान अमेरिका छिकटाण घटाइण में पाकिस्तान सभिनी खां अॻुवारो आहे फलस्तीन ऐं कश्मीर तकरारनि खे सिक्योरिटी काउंसिल जे ठहराउ मूजिब हल करणो आहे
3: आबनाए हुरम्स बाबति विच ओभर जे मुल्कनि ऐं ईरान विच में अमान में अॼु थींदड़ इजलास मुल्तवी ईरान इख़्तियारनि मूजिबि इजलास तहरान ऐं मस्कत में गडि॒यल फ़ैसिले तहत ख़िते जे मुल्कनि जे दरख़्वास्त तहत मुल्तवी कयो वियो आहे अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त नार्वे वारा मुल्क ईरानी इख़्तियारनि मुलाक़ातूं करे सघनि था इहो हुननि जो पंहिंजो फ़ैसिलो आहे असांखे को एतिराज़ न आहे

0: बापराणी वेझो जोड़े जे कतल खिलाफ वारसन जो लाड़काने में एसएसपी चौक ते लाश रखी धरणो घोट समाई उनड़ में कतल थियल मुसरत ए लखमीर उनड़ जे वारसन लाश रखी एहतियाती मुजाहिरो कयो। वारसन जो चवण आहे त गुज़िरियल ॾींहं जवाबदारनि गुलज़ार हबीब राहिब ऐं अरशद ऐं ॿियनि मुसरत ऐं लखमीर उनड़ खे क़तल कयो। हिकु औरत ऐं नींगर समेत ॿिनि ॼणनि खे अगवा करे गुम कयो वियो आहे। केस दाख़िल कराइण लाइ असां बकापुर थाणे ते वियासीं पर एसएचओ इनकार करे छॾियो। पुलिस कातिलनि जे वंगारो आहे ऐं केस दाख़िल करण खां तयार नाहे। आईजी सिंध ऐं डीआईजी लाड़काणो क़तल केस दाख़िल कराए जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करायनि।
1: खैरपुर भरसां शादी तकरीब में फायरिंग निंगर मारिजी वियो। हिकु ज़ख़्मी ॻोठ सईद खान लाखो भरसां शादीअ दौरान ख़ुशीअ में फायरिंग निंगर अली ज़मान धारे जो मारिजी वियो। गोली लॻण करे ॾहनि वरनि जो साईंदास धारे जो ज़ख़्मी थी वियो। शादीअ जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील।
0: ऐं बदीन भरसाण ॼातल शख़्स जो गोरीबंद लाश हथायो आहे। मीरवा भरसां बोरीअ में लाश ॾिसी इलाइक़े वासियुनि पुलिस खे इतलाउ ॾिनो। पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252586।
5: जी हा, 2315525786।
4: जीए FM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Aap sun rahe hain GFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: got some.
1: Express PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: गाड़ी के क्वाड कॉर्पोरेटर जरिए निशानो बनाए वयो कार्रवाई दौरान दहशतगर्द कमांडर नकीब समेत टे दहशतगर्द मारजी वया पश्चिम में सीटीडी की कार्रवाई के नतीजे में छह शकी दहशतगर्द मारजी वया सीटीडी तर्जमान मूजिब ऑपरेशन दौरान चार अहलकार भी जख्मी थिया मारजी वेल दहशतगर्दन जो तालक पाबंदी मडल तंजीम से आए
5: पाकिस्तान विच ओभर में छिकताण घटाण लाइ किरदार अदा करे रहियो आहे गडि॒यल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ़्तिख़ार चयो आहे त मके मुआदे में पाकिस्तान वधीक ज़िमेवार तस्लीम कयूं था त सूरतहाल बहितरी तरफ़ न पई वञे ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में बि पाकिस्तान सभिनी खां अॻु भरो आहे
4: आबना उर्म्स बाबति विच ओभर जे मुल्कनि ऐं ईरान जो अॼोको रिथियल इजलास मुल्तवी ईरान इख़्तियारनि मूजिबि इजलास तहरान ऐं मस्कत जे गडि॒यल फ़ैसिले तहत ख़िते जे मुल्कनि जे दरख़्वास्त मुल्तवी कयो वियो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त नार वारा मुल्क ईरानी इख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं करे सघनि था असांखे को एतराज़ न आहे

0: बापराणी वेझो जोड़े जे कतल खिलाफ वारसन जो लाड़काने में एसएसपी चौक ते लाश रखी धरणो घोट समाय उनड़ में कतल थे मुसरत ए लखमीर उनड़ जे वारसन लाश रखी एहतजाज कयो वारसन जो चवण आहे त गुजरियल ॾींहं जवाबदारन गुलज़ार हबीब राहिब ऐं अरशद उनड़ ऐं ॿियनि मुसरत ऐं लखमीर उनड़ खे कतल कयो हिकु औरत ऐं नीगर समेत ॿिनि ॼणनि खे अगवा करे गुम कयो वियो आहे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे
1: खेरापुर भरसां शादी जे तकरीब में फायरिंग निंगर मारिजी वियो हिकु ज़ख़्मी घोट सईद खान लाखो भरसां शादीअ दौरान ख़ुशीअ में फायरिंग निंगर अली ज़मान धारे जो मारिजी वियो गोली लॻण करे ॾहनि वरनि जो साईं धारे जो ज़ख़्मी थी पियो शादीअ जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील

0: बदीन भरसाण जातल शख्स जो गोरी बंद लाश हथाए वो है। मीरवा भरसा बोरी मां मिले लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। सुञाणप टंडो बागो वासी हाकिम शाह जे नाले सां कई वई आहे।
1: ऐं मलीर जे इलाइक़े इब्राहिम हैदरीअ में बिजली बंदिश ख़िलाफ़ रहवासियुनि जी रैली ऐं धरणो सवेर रहवासी के इलेक्ट्रिक ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली कढी। कोरंगी क्रॉसिंग रोड ते धरणो हयो। सदन चवण आहे त के इलेक्ट्रिक ज़ुल्म जी इंतिहा करे छॾी आहे। बिजली न हुअण सबबि सख़्त परेशान आहियूं। के इलेक्ट्रिक इंतिज़ाम ख़िलाफ़ बिजलीअ जे बहालीअ ताईं एहतजाज जारी रखियो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331-252-5786।
4: जी हा, 2315-2575-786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर।

0: पर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: ऑपरेशन दौरान चार अहलकार बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो तालुक पाबंदी मरल तंज़ीम सां आहे।
1: पाकिस्तान विच ओभर में छिकताण घटाइण लाइ किरदार अदा करे रहियो आहे। घरेल क़ौमनि में पाकिस्तान जी नुमाइंदी आसिम इफ्तिखार चयो आहे त मके मुआदे में पाकिस्तान वधीक ज़िमेवारियूं खणी रहियो आहे। तस्लीम कयूं था त सूरतहाल बहितरी तरफ़ न पई वञे। ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में बि पाकिस्तान सभिनी खां अगभरो आहे।
0: आबनाह हनुम्स बाबति विच ओभर जे मुल्कनि ऐं ईरान जो अॼोको रिथियल इजलास मुल्तवी। ईरानी इख़्तियारनि मूजिबि इजलास तहरान ऐं मस्कत में गडि॒यल फ़ैसिले तहत खिते जे मुल्कनि जी दरख़्वास्त ते मुल्तवी कयो वियो आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त नार वारा मुल्क ईरानी इख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं करे सघनि था, असांखे को एतराज़ न आहे।
1: मुबैना तौर अगवा ॿिनि गाॾियुनि में सवार हथियारबंद बंगले ते काह करे तशद्दुदबाज़ ज़मीनदार हसन अली खे अगवा करे विया। वाके जी इतलाह ते बिरादरी जा माण्हू ऐं शहरी गॾु थी विया। अॻोणे सूबाई वज़ीर हसन अली खे कंहिं अगवा कयो, पुलिस ॾे ख़बर।
0: मेयर वेझो ज़मीनी तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल। कचे तरफ़ वेंदड़ ॻोठ जाम खान भुट वासी ज़फर भुट खे पतण ते गोलियूं हणी क़तल कयो वियो। वारसनि जो चवणु आहे त जहिड़े सां को बि वास्तो न आहे, नौजवान खे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। ज़रीअ जो चवणु आहे त ज़मीन जे मालिकीअ तां आलमाणी ऐं जतोई धुरियुनि में हलंदड़ तकरार आहे।
1: कैरपुर भरसां शादी जी तकरीब में फायरिंग नींगर मारिजी वियो। हिकु ज़ख़्मी घोट सईद लाखो भरसां शादी दौरान ख़ुशीअ में कयल फायरिंग नींगर अली ज़मान दारेजो खां हयाती खसे वरिती। गोली लॻण करे 10 वरियनि जो साईं दा दारेजो ज़ख़्मी थियो। शादी जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वयूं।
0: बदीन भरसां अणॼातल शख़्स जो ॿोरी बंद लाश हथ। मीरवा भरसां ॿोरीअ मां मिलियल लाश इस्पताल मुंतकिल सुञाणप टंडरो बाग़ो वासी हाकिम शाह जे नाले सां कई वई आहे।
1: काज़ी अहमद वेझो मीरण रुकण शाख में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ नंढनि आबादगारनि जो एहतियाती मुज़ाहिरो। आपासी अमलदारनि ते पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। आबादगारनि मूजिब मीर रुकण शाख जे पोछड़ में पाणी न पहुचण सबब फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी विकिरो कंदड़ अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे।
0: भाकराणी वेझो जोड़े जे क़तल ख़िलाफ़ वारसनि जो लाड़काणे में SSP चौक ते लाश रखी धरणो। घोट समायो नण में क़तल थियल मुसरत ऐं लखबीर उन जे वारसनि लाश रखी एहतजाज कयो। वारसनि मूजिब गुलज़ार हबीब राइब ऐं ॿियनि मुसरत ऐं लखबीर खे क़तल कयो आहे। नींगर समेत ॿिनि ॼणनि खे अगवा कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।
1: मलीर जे इलाइक़े इब्राहिम हैदरीअ में बिजली बंदिश ख़िलाफ़ रहवासियुनि जी रैली ऐं धरणो। रहवासियुनि खे इलेक्ट्रिक ख़िलाफ़ रैली कढी कोरंगी क्रॉसिंग ते धरणो हयो। मुज़ाहिरीन मूजिबि बिजली न हुअण सबब सख़्त परेशान आहियूं। के इलेक्ट्रिक इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ बिजलीअ जी बहालीअ ताईं एहतियात जारी रहंदो।
0: पने आकल जे कचे हुसैन बेले वासी औरतुनि जो एहतजाज। मुखालफ़न ते संगावती तकरार तां टिनि ॼणनि खे अगवा करे गुम करण जो इल्ज़ाम। रज़ागोट थाणे जे हद हुसैन बेले वासियुनि माई ज़ोरां ईंदड़ ऐं ॿियनि एहतजाज कयो। औरतुनि मूजिब कचे में संगावत तां माइटनि सां झेड़ो थियो, जंहिं बाद जवाबदारनि अब्दुल समी अब्दुल फताह अब्दुल रसूल खे खंभे गुम करे छॾिया। जवाबदार सैफुल्ला फैज़ मोहम्मद मलूक ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे गुम थियलनि खे बाज़ियाब करायो वञे।
1: मटियारी जे शहर भिक्षा में शहरी हेस्को ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज। शहरीन बुघिया मोहला खां रैली कढी हेस्को ऑफिस आॾो एहतजाज कयो। भिक्षा शहर जे बुघिया मोहले समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे बिजली चोरीअ जो इल्ज़ाम। मरी बहिराड़ी फीडर में शामिल करण ऐं कलाकनि जा कलाक बिजली बंदि रखण ख़िलाफ़ इल्ज़ाम। लोड शेडिंग ख़तम करण जो मुतालबो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
4: सिंध का शहर खास
3: मीरपुर
4: महकते इस शहर में।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: जेकर तवां के मैदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
7: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252586।
7: जी हा, 2331-2525-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: करते
1: रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: बीट्स फार्मोलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार, सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजय तंदला तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। पुरकुली धो के संबंध है चादो की बारिश और आसवर खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे से जागते जमीन से आसमां तक जिंदगी से मौत तक सांस से तर्दकम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरप्रकाश मटियारी सकरन मेहरापुर माथिली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। जनाब प्रोग्राम नशर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की जाएंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारी स्किन के मुताबिक है तो आप इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा बातें जान सकते हैं ताकि आप लोग आराम से तसल्ली से और दिल खोल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सके। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यस आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी भी समाते हैं जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है उन तमाम लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, इसका फार्मूला ऐसा रखा गया है कि हर कोई इंसान आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। ओके तो यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर रीजन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल जनाब सो आपकी सिद्राव के साथ मौजूद है ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम करने के साथ साथ बिल्कुल जी सर आपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत की हालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद हम शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुबकुल मूड के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। बिल्कुल जी 2 घंटे हमारे पास मौजूद है और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं इन्हीं शाली बातें और इन्हीं शाली बातों में जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जिक्र भी होने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो शेयर कीजिए क्योंकि जनाब शेयरिंग इज केयरिंग होती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की समा लाने का काम करती भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों 440 उल्की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम जो करेंगे तो जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास एक कलाम मौजूद है प्लस नाद तो हम जरा प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ। उसके बाद जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और हसीन होते जाइए।

जी आप सुन रहे हैं वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि ना सिर्फ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती कैसे बढ़ने वाली, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद आपके चेहरे पर कितनी अच्छी वाली खूबसूरती आपको मिलने वाली है। तो चाहे आप मर्द जाते हैं चाहे आप खवातीन, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे होते हैं जनाब, थोड़े बहुत से आगे खर्चे भी कराते हैं। अगर आप भी जरा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं और खूबसूरती को जरा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल आप लोगों के लिए है। अच्छा, साथ साथ हम बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोग किस तरह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, यानी कि शामली प्रोग्राम कैसे होंगे वो भी बताते हैं, और साथ साथ आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि भाई हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी हमारी ऐसा दिल चाहता है कि भाई ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए भाई। हाँ, तो ऐसा होता है कि हर किसी की ये भी ख्वाहिश होती है तकरीबन कि भाई हमें अगर चांस मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कुछ चीजें, जैसे घूमना फिरना, किसी बाहर जाना, कौन सा मुल्क देखना, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो कि हम विजिट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि जेब जो है ना वो जरा इजाजत नहीं देती। तो आज आप मुझे जरा ये बताएंगे कि अगर आपको फ्री में, हाँ जी फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में वो जगह घूमने का मौका मिले जो कि आपकी भाई फेवरेट डेस्टिनेशन है, फेवरेट आपकी जगह है, तो आप फिर मुझे बताएं कहाँ जाना पसंद करेंगे। भाई मुफ्त में तो चवना अगर धिको भी डे कोई वो भी खायो विंदो आए, तो तव मुखे बुधायो अगर तव्हां जी कोई भी फेवरेट जगह आई होती तव्हांखे मुफ्त में मोकिलियो वञे त तव्हां गाॾी वञण पसंद कंदा, ठीक आहे। सो बिल्कुल अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। और जी अगर आप मुझे

0: ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, इससे ये होता है कि बहुत ज्यादा वाले लोगों के पास हमारी पोस्ट जहाँ पहुंचती है, ठा करके बजती है। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक किया करें और शेयर किया करें, दोस्तों को मेंशन कीजिए, उनको भी पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे चल रहे हैं मेरी जान। ओके जी, तो आज आप मुझे बताने वाले हैं, अगर आपकी कोई फेवरेट जगह हो जहाँ पर आपको मुफ्त में जाने का मौका मिल जाए तो आप कहाँ पर जाएंगे। हाँ जी, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपके अच्छे अच्छे जवाब मुझे मिल सकते हैं। ओके, सो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ फरवा गुल मौजूद है। वालेकुम असलम, कहती गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। हाय आपी, आप कैसी हैं? आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं। फरवा मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ हैं, आप हमें सुन रहे हैं जी। वालेकुम असलम, कहते हैं आपको बहुत शुक्रिया। और साजिद अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलम, कैफ हाल में ठीक हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं। और फहीम भाई हमारे साथ कहते हैं विसरे सारो लोक शालन विसरे तू दोखे केडो मुंह सांढ़ो आए साह में। अस्सलाम वालेकुम, मौला अली सलाम मदद अदा छा लाए खुश आयो सफा चा को सलेट कलम मस्जी डवी। प्रोग्राम तो लाजवाब आए अवा वांगे। अच्छा गानो तुम्हें लिखियो है, ठीक है गानो तुम जो बिल्कुल हलाइंदसि। थैंक यू तुम्हारे सगड आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई को बुधायो। और लिखते हैं कि अब किसी से उलझने का दिल नहीं करता, आप सही में गलत और बात खत्म। अच्छा आप सही में गलत और बात खत्म, सही है जी सही है, असा व्यक्त ये कदाजी कहते अदा बिल्कुल घर वालों के ताने डेली सुनते हैं। हा उ ही गाल ना, मुख्य खबर है घर वाले जहाँ ताना बुध आयो ताना बुध कर मुझे प्रोग्राम में गाना बुध नहीं आयो ये न। चलें कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा सा, आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें ठीक है। और यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम हो गया जी। और शुएब मंकी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। और आपने प्रोग्राम की तारीफ कर दी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ है, गुड आफ्टरनून, आपको भी वेलकम कहा जाता है। हिदायतुल्ला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल है, ये गाना तो चला ओके मां दिसां थी सब गाना हलाने जी कोशिश कयूं था। अच्छा उनका अलावा अखलाक भाई भी प्रोग्राम में आ चुके हैं, हेलो हेलो जी। आंसर तुम्हारे नो आए मदीना, ओके क्या बात है जबरदस्त। सिकंदर अली हमारे साथ ही यानी कि सालार सिकंदर, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट आयोवा, वेलकम करे इसे स्मार्ट वेलकम वेलकम। ओके जी, और मोहम्मद राशिद अमान भी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें जी। आप भी फोजिया सुमरों का गाना सुनना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगी सबके गाने लगाऊं। और हिदायतुल्ला कहते हैं जवाब है पहले तो मदीना घूमूंगा फिर अगर पैसे बचे तो तुर्की जाऊंगा। अच्छा वही भाई कहते हैं टॉपिक लंदन, ओके। और अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अदी अमां के वेलकम कयूं था भले प्रोग्राम में। अच्छा तुम आए हो तो लगता है जैसे बहारों का कोई मौसम आया हो, खुश आमदीद कि तुम आए महफिल में यूं जिस तरह सुबह नौ में आमदे सहर हो। ओके जी, और रशीद खोसो भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मीरपुर खास से आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, खुश आमदीद। और साथ साथ आप बस टॉपिक को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम किस किस ने इस्तेमाल की और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी या फिर नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही। भाई मिलनी चाहिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इतने सारे फायदे हैं, तो भाई आप फायदा उठाइए ना, वैसे तो हर चीज से फायदा उठाते तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से भी फायदा उठाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई सिद्रा इतना क्यों बता।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें, शराय तो जवाबित लागू है।
3: अवहां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे।

0: थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत।

0: 8631 63.
1: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एच एंड डी स्किन ब्यूटी शो। जी जनाब, तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ही बातें हो रही हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है ये जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो कुछ चीजें कुछ बातें ऐसी होती है जो वाकई भाई आपको पता होनी चाहिए। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कैसे जरूरी है बताएं तो सही, तो बिल्कुल आपको बताते हैं। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वेलकम कहते हैं। बाकी जो लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम क्यों इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रोग्राम सुनिए, आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे, आपको जो मैं नंबर बताऊंगी ना उन नंबर्स के ऊपर बस आपने राब्ता करना होगा और राब्ता करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही आसान सा काम है, बहुत ही आसान सी ये चीज लगती है मुझे कि अगर कहीं पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल ना हो तो बस आप झट से नंबर घुमाएं, कॉल करें या फिर मैसेज करें और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी। ओके जी, सो डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309 ॿुड़ी 332 73-84-309 ॿियो ही नंबर आहे। अगरि हिकिड़ो नंबर बंदि हुजे त ॿिए नंबर ते तव्हां राबितो करे सघो था ऐं ॿियो तव्हांजो रिस्पॉन्स जेको आहे न तव्हांजी ॻाल्हियुनि जो तव्हांखे ज़रूरु ॾेई छॾींदो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में तव्हां मालूमात वठणु चाहियो था त तव्हां हिन नंबर ते राबितो करे उन्हनि खां पुछी सघो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम किथे किथे अवेलेबल आहे, किथां किथां असां वञी परचेज़ करे सघूं था। ओगरी, सो अब बढ़ते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के बहुत सारी वजूहात है। सबसे पहली वजह तो ये है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इसे स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते, हमारी स्किन सेंसिटिव है, ये हो गया वो हो गया, कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो अच्छे से सूट नहीं कर पाता, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरा ट्राई करके देखिए, आपको यकीन जाने बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देने वाली है। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिला दी गई है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना, ये जनाब पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे तो सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट के अंदर पाए जाने वाले ये प्रोडक्ट होते हैं, ये चीजें होती हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं भाई आपका शुमार भी उन प्रोडक्ट में होना चाहिए जो कि भाई प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो हैं ये आपकी स्किन को इस तरह खूबसूरत बनाएंगे, जैसे कि भाई आपने नोटिस करी होगी चीज की बहुत सारी खवातीन जो कि महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं और उनका ऐसा होता है कि भाई टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो आपको अगर अपने टाइम की भी जरा ऐसा चाहते हैं कि भाई टाइम भी इतना ज्यादा हमारे पास नहीं है और पैसे भी इतने ज्यादा हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, क्योंकि ये 2-in-1 फार्मूला है। वो कैसे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसी खूबसूरती मिलती है जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐसा नहीं कि सिर्फ खवातीन ही इस्तेमाल कर सकती हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इतना जनाब ये जदीद फार्मूला है कि आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और फाइनली आप ये महसूस करेंगे कि भाई हमारी जो केमिकल वाले प्रोडक्ट थे ना उनसे जान छूट गई है, अब हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट मौजूद है जो कि आप लोगों को मिनिमम 2 दिनों के अंदर बहुत अच्छा सा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करके देखिए, यकीन जाने आप खुश हो जाएंगे। ओके
इसी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो डी स्किन का फेस वॉश भी मालूम कराइएगा, मिल रहा है नहीं। अगर मिल रहा है तो बढ़िया परचेज कीजिए, नहीं मिल रहा तो उसके लिए जो नंबर आपको बता रही हूँ उसके ऊपर रब्ता करते रहिए और अवेलेबल कराते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। ओके हो गया जी, बिल्कुल जी ओके हो गया। यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें भी होंगी हमारी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लगाएंगे और साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है और सवाल ये पूछा है कि भाई हमारा तो दिल करता है कि फ्री में हमें कोई इंसान पूरी दुनिया घुमाए, ऐसा न करें भी न कहूँ। सरिमा आवाज खाने के सवाल पूछो है तो अगर तुम्हारी जगह फेवरेट जगह है जिते तुम वन चाहो था पर तुम्हारा पैसा को ना है, तुम्हारी जेब तुम्हें इजाजत कौन थी कोई तुम्हें चाहिए तो मां फ्री में तुम्हारी फेवरेट जगह घुमाईंदम तुम्हारी फ्री जगह केड़ी आए किथे तुम वन पसंद कर अगर तुम्हें कोई फ्री में किथे मोकले जगह तुम्हारी फेवरेट है। ओके जी, सो जी मानो असा फेसबुक से मौजूद है वे पोस्ट के ज्यादा का ज्यादा लाइक एंड शेयर करना हलो बाकी जी पैनल से मैसेज कन था ठीक है जी तुम्हारा मैसेज भी पढ़िया वा फेसबुक वा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कन था को डी वा थी पर इतने असि लिस्ट में गानों है बिल्कुल असा वो गानों बुधंदी सब का पे।

लाइव में क्या मसला है मुझे जरा तफसील से बताइए ताकि मुझे समझ आ जाए कि क्या मसला चल रहा है लाइव में, या फिर एक इंसान बताएगा तो मुझे ये लगेगा कि भाई सिर्फ उन्हीं की यहाँ शायद ये मसला है, कुछ और भी लोग बताएं कि लाइव सही चल रही है नहीं, ताकि हम देखें कि वाकई भाई लाइव में मसला है या बस आप ही का नेटवर्क खराब होगा।

क्या बात है, बहुत ही प्यारे से गाना एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो जरा पता तो चले। अच्छा, यहाँ पर साजिद भाई लिखते हैं कि मोहम्मद ताबिश और मोहम्मद हसी भी आपका शो सुन रहे हैं जनाब, दोनों को वेलकम कहते हैं।

ओके जी फहीम भाई, आपने जो सिफारिश वाला कमेंट कर दिया है तो ये सिफारिशें इधर तो नहीं चलती। अगर हाँ ऐसी बात है आप उसकी सिफारिश करेंगे तो क्या पता आपके मैसेज गाने चलना बंद हो जाए। तो ये किसी की भी सिफारिशें ये काम मत किया करें, बीच वाला काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस प्रोग्राम में आया करें, सुकून से प्रोग्राम को एंजॉय किया करें। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या मसला है, वो उन्हें बोलें कि आप खुद ही मैनेज कर लें, ठीक है। आप उनके बीच में मत आइए वरना आगे जाकर वही लोग आपको नुकसान देंगे, फिर आप रुलते फिरेंगे और बोलेंगे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जरा लोगों के मसलों में मत पड़िए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, सुकून से प्रोग्राम में आइए, एंजॉय कीजिए और चिल मारिए जिंदगी में।

कहाँ जाना पसंद करेंगे बताएं मुझे, फ्री में अगर आपको कहीं जाने का चांस मिल जाए, भाई क्या बात है बड़ी अच्छी ऑफर है वैसे। अच्छा इकबाल आशारी भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। सज्जाद भाई कहते हैं कि मदीना जाना पसंद करूंगा, बहुत बढ़िया जी। अच्छा अनवर भाई कहते हैं यदि सबनी से गाना हलायो सवाब खटियो, गाना हलायन तो गुनाह आए इंसान पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाता है, हम बस ये थोड़ा सा गुनाह ले लेते हैं। अच्छा अली गुलाम बिरोही भाई हमें सुन रहे कहते हैं माशूक शर को प्ले करें, भाई मत बोलें ऐसी फरमाइशें। अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक ऐसा मौका मिले तो जो अच्छा वैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को पता ना ही चले तो बेहतर होता है, और अगर आप भी देश के ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है जी, आप जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए और देश के ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा पूछिए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल करानी बाकी रहती है, क्योंकि जब आपके करीबी जनरल स्टोर पर देश के ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होगी तो फिर आपके लिए मजे होंगे ना, बस जाएंगे परचेज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो देश के ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला, नो टेंशन, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए।

की करते भाई। अच्छा फरवा कहती है कि आप ही अर्ज किया है, कुछ लोग दिल के इतने करीब होते हैं कि उनसे दूरी का हर लम्हा सजा लगता है। ओके अब्दुल गफार भाई हमारे साथ कहते हैं लाजवाब शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और आपके साथ मौजूद है मास्टर अब्दुल गफार, मोहम्मद बिलाल और मास्टर सईद और मास्टर वजीर अहमद चौहान, सब भाइयों को वेलकम कहते हैं। अच्छा साजिद भाई कहते हैं कि असा जदे दुबई वेंदा आयूं तो तवहां जो प्रोग्राम न हलंदो आए छो, दुबई में भी तवहां से जो प्रोग्राम आराम सा फेसबुक ते बुधी सगो था। अगर फेसबुक ते जी ता हाणी मुझे प्रोग्राम बुधो पया ना, ई तवहां दुनिया जे के भी कोने में मौजूद आयो तो ता मुझे प्रोग्राम बुधी सगो था। अच्छा फहीम भाई, आप विजिट करने से पहले जो है ना इन नंबर्स के ऊपर जरा राबता करके उनसे मालूम लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ये करीबी जनरल स्टोर्स पर कहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। अच्छा गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम एंड मौला इस्लाम अदर, तबियत मेरी ठीक ठाक है और सारे लोग भी ठीक ठाक ही होंगे। आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है जनाब, आपके प्रोग्राम हम सुनते हैं रोजाना, बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहते हैं। एहसन अरबानी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम मौला इस्लाम अदर, ओ माय फेवरेट आरजे मीडो मुस्कान, कैसी हैं आप, मैं भी जिंदा हूँ। अच्छी बात है, आई हाय जिंदा है, चलती फिरती मरे थे। और कहते हैं शो फिर से आ गया, क्या बात है, वेलकम कहते हैं आपको व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो में। और हाँ जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम कहते हैं, स्वागतम के साथ। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कब लगा रहे हैं ये तो बताइए।

क्या बात है, 20 दिन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे ही नहीं, बताइए जरा, शेयर किया करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, इस्तेमाल कीजिए। 20 दिन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई मतलब हर कोई, चाहे आप मर्द हंसाते हैं, चाहे आप खवातीन, आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, तो इस्तेमाल कीजिए बिना देरी और बिना सोचे।

मोदी जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और यहाँ पर गुलाम फरीद बलोच लिखते हैं कि जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है ना, तो अक्सर वो लोग भी साथ छोड़ जाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा मान होता है। अपने पैरों पर खड़े होना सीखें और खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाएं कि किसी का सहारा ना लेना पड़े। मुश्किल में सिर्फ आप ही अपने आप को संभाल सकते हैं। लोग सिर्फ आपकी कामयाबी का हिस्सा बनते हैं, आपकी तकलीफ का नहीं। इसीलिए दूसरों से तवक्कात कम रखें और अपनी जात से मोहब्बत करना सीखें। ये चीज

बात है जी, ये कमाल है डे स्किन ब्यूटी क्रीम का। तो आप भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। अच्छा दर्दी दिल हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक में स्वीडन जाना पसंद करूंगा। ओके क्यों जाएंगे वैसे वहाँ। अच्छा यहाँ पर बाहर इरफान सियाल साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद के लिए ग्रेट होस्टिंग में आर जी। गुड आफ्टरनून, हेलो सर, वेलकम सर। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि फेस वॉश चाहिए डी स्किन का। हाँ जी, आप कॉल करके मालूम लीजिएगा कि डी स्किन का फेस वॉश कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ताकि आप वहाँ से जाकर आराम से परचेज कर सकें, ठीक है। अच्छा चाचा कहते हैं कि लाइफ में कोई मसला नहीं है। हाँ मुझे वही लग रहा था, वरना लाइव में मसला होता तो ऐसे लोग चुप करके बैठे होते, दंगे हो जाते यहाँ पर।

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय करें और पूरे पूरे 3 बजे तक आपका हमारा साथ होगा जी। प्रोग्राम के अंदर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और ऐसे ही बातों के सिलसिले को जरा जारी और सारी रखा जाएगा। टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जाने जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, वापसी जल्दी आप लोगों के पास। सो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय करें और पूरे पूरे 3 बजे तक आपका हमारे साथ होगा जी प्रोग्राम के अंदर। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और ऐसे ये बातों के सिलसिले को जरा जारी और सारी रखा जाएगा। टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले।
1: आप सुन रहे थे
2: एटमी सरगर्मियुनि वारियूं ख़बरूं पूरियूं आहिनि।
3: अमेरिकी फ़ौज ईरान में किरियल पंहिंजे जंगी जहाज जे पायलट खे बचाइण वारो वीडियो जारी करे छॾी। अप्रैल में पेश आयल वाक़िए जे 6 महीननि बाद वीडियो जारी कई वई। अमेरिकी फोर्सेज ईरान में किरियल F-15 जहाज जी हिकु पायलट खे कुझु कलाकनि ऐं ॿिए खे 3 ॾींहनि बाद रेस्क्यू कयो वियो।
2: इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI जी 27 सेप्टेम्बर वारे लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। वॾनि वज़ीरनि खे एहतजाज लाइ सरकारी मशीनरीअ जो इस्तेमाल रोकण जो हुकुम। सरकारी मुलाज़िमनि ऐं आफ़ीसरनि खे एहतजाज में शरीक न थियण जो हुकुम। अदालत चयो आहे त कंहिं सियासी जमायत या पब्लिक ऑफिस होल्डर खे इस्लामाबाद जा रस्ता बंदि करण जो अख़्तियार न आहे। कंहिं बि सरकारी मुलाज़िम खे एहतजाज में शिरकत लाइ बि मजबूर नथो करे सघिजे। हाई कोर्ट हिदायतुनि सां गॾु दरख़्वास्त अप्लाए छॾी।
3: सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलूचिस्तान में हिंदुस्तानी फितना ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। 9 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि मस्तोंग में दहशतगर्दनि जी गाॾी खे क्वाडकॉप्टर ज़रिए निशानो बणायो वियो। कार्रवाई दौरान दहशतगर्द कमान नकीब समेत 3 दहशतगर्द मारिजी विया। मशीन में बि CTD जी कार्रवाई जे नतीजे में 6 शकी दहशतगर्द मारिजी विया। CTD तर्जुमान मूजिब ऑपरेशन दौरान 4 अहलकार बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। मारिजी विया दहशतगर्दनि जो तालुक पाबंदी वारी तंज़ीम सां आहे।
2: लबनान जे घरू वज़ीर जो ममलकती वज़ीर तलाल चौधरीअ सां गॾु यादगार पाकिस्तान जो दौरो। लबनानी घरू वज़ीर पुलिस लाइन जो बि दौरो करे लबनानी घरू वज़ीर यादगार पाकिस्तान ते गुल बि रखिया। FC जे दस्ते लबनानी घरू वज़ीर अहमद अरजार खे सलामी बि ॾिनी।
3: खिपरो वेझो अॻूणो सूबाई वज़ीर ऐं ज़मीनदार हसन अली मुबैना तौर अॻवा ॿिनि गाॾियुनि में सवार हथियारबंद बंगे ते काह करे तशद्दुदबाज़ ज़मीनदार हसन अली खे अॻवा करे विया। वाके बाद शहर में शटरबंद हड़ताल। अॻूणे सूबाई वज़ीर हसन अली चायो खे अॻवा कयो वियो आहे। पुलिस बेख़बर आहे।
2: मेयाड़ वेझो ज़मीनी तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल। कचे तरफ़ वेंदड़ ॻोठ ॼाम खान भटवासी ज़फर भोट खे पतण ते गोली हणी क़तल कयो वियो। वारसनि जो चवण आहे त जहिड़े सां को बि वास्तो न आहे। नौजवान खे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। ज़रियनि जो चवण आहे त ज़मीन जे मालिकीअ तां आलमाणीअ जतोई धुरनि में हलंदड़ तकरार आहे।
3: बदीन भरिसां हथ आयल ॿोरी बंद लाश जी सुञाणप थी वई। मीर वाह भरिसां मिलियल लाश जी सुञाणप टंडो बागो वासी हाकिम शाह जे नाले सां थी आहे। पुलिस मूजिबि मक़तूल खे पुठियां गोली लॻल आहे। पोस्टमार्टम बाद
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
1: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9-6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03132525786।
2: जी हा, 2-3125-2786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मो मिरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में चर्चे हो रहे हैं जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता है और न सिर्फ बताया जाता है बल्कि आप लोगों को उन तमाम चीजों से अवेयर भी किया जाता है जो चीजें शायद आप नहीं जानते। कई मरतबा बहुत सारी खवातीन या फिर इस तरह के लोग मुझे मिल रहे होते हैं जिनका ये होता है कि भाई मुझे समझ नहीं आती कि उनको रिलेटेड स्किन से कुछ बेसिक सी नॉलेज भी नहीं होती, यानी कि बहुत से मासूम से लोग होते हैं, अगर उनसे कुछ भी पूछा जाए या फिर उनकी स्किन को देखा जाए तो ये अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले इंसान ने अपनी स्किन के साथ कितना गलत कर लिया है, क्योंकि जो भी आपको प्रोडक्ट बताए जाते हैं तो वो आप ठा करके लगा देते हैं स्किन के ऊपर। और जब ये आदत आप लोगों की हो जाती है ना, पड़ जाती है ये आदत इंसान के अंदर कि कोई भी प्रोडक्ट बस लगाना है लगाना है लगाना है, तो ये आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि आपके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, आपके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक्नी के निशानात आ जाते हैं और आप अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इन तमाम प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा सूटेबल सा प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए जो कि सेफ भी होना चाहिए हम इस्तेमाल करें तो भाई कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैं यहाँ पर चला चला के आप लोगों को बता रही होती हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी ना। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम देखा जाए तो ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने तैयार किया है जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि जिनको स्किन की फुल नॉलेज होती है कि आपकी स्किन के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीजें आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। तो अगर आप भी अपनी स्किन से प्यार करते हैं, अपने चेहरे को खराब नहीं करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है और इसके साथ अल्फारबोटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि इससे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही आप लोगों को ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो कि आप लोगों से ना लोग पूछेंगे भाई आप इतना महंगा महंगा फेशियल कहां से करा के आए हैं, इतनी महंगी ट्रीटमेंट आप कहां से ले रहे हैं। आप उनको बस इतना बताइएगा ये कमाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको इतने अच्छे रिजल्ट देंगे कि आप वाकई हैरान हो जाएंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप चाहे मर्द हंसाते खवातीन इस्तेमाल कीजिए। वैसे भी कहते हैं ना खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जिल्द की जो केयर होती है, ख्याल होता है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत भी बना देगी और बेहतरीन आपकी स्किन के लिए इंतखाबी साबित होगा। और जनाब अब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब इस्तेमाल करते रहेंगे आप तो आपकी स्किन जो है वो नरम मुलायम हो जाएगी, हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी और आपको स्किन के अंदर एक अच्छा खासा रिजल्ट जो है ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अच्छी तरह जो है आपकी स्किन की केयर करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो अगर आप भी कुछ अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ प्यारी सी चीज अपनी स्किन को देना चाहते हैं, तो ये भी एक गनीमत होती है जनाब कि आपको टाइम से पता चल जाए कि भाई कुछ चीजें हमारी स्किन के लिए वाकई जरूरी होती हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए और वहां से नाम लेकर तलब कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल जाएगा, तो वो भी आप साथ में परचेज कीजिएगा। दोनों चीजें साथ में लगाइए और दोनों चीजें साथ में लगाने के बाद आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें सुन रहे हैं, किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, किसी भी गांव से आप हमारा शो सुन रहे हैं, ये चीज मैटर नहीं करती, बस ये चीज मैटर करती है कि वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी ट्री 12-50-970 और यो नंबर आहे 03-033-27-38-4309 यानी बुड़ी 332 है।

ओके जी, बियो नंबर आहे बुड़ी 323 73 84 390। ओके सो ही नंबर तव्हां डायल कयो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल करायो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे चर्चे जी तव्हांखे ख़बर पइजी वई हूंदी त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कहिड़ो वॾो नालो आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकड़ी जनाब प्रीमियम क्वालिटी जी प्रोडक्ट आहे, सो तव्हांखे लाज़मी ट्राए करणु घुर्जे। वैसे ट्राए करण में छा ई वेंदो, सो तव्हां ट्राए करे ॾिसो, यकीन जाने भैया को बहुत मजे आ जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और बहुत ज्यादा जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इस चीज का अंदाजा लगा ही लेंगे। अच्छा, तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं। आप तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद है, खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो जी आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताइए, अगर आपको फ्री में कहीं पर जाने का चांस मिल जाए तो आप बताएं आप कहां जाना पसंद करेंगे। और इसी के साथ साथ यहां पर हम पैनल की जाने पाते हैं, तो आपके कुछ मैसेजेस हैं। ओगरी सो हमें यहां पर ज्वाइन किया है पटीदन खान अब्दुल मनान। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, मुझे भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लेनी है मगर यहां पटीदन में नहीं मिल रही, प्लीज प्ले करना। अच्छा, तव्हां गानो लिखियो आहे और पटीदन में अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले त जेको हाणे तव्हांखे नंबर ॿुधायो न, उन नंबर मां हिकड़े नंबर ते तव्हां राबितो करे वठो, ऐं उन्हनि भाई साहब खे चओ त भाई साहब असांजे पटीदन में बि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए छो त असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करणु चाहियूं था, ठीकु आहे। और महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, मुस्कान का मतलब मुस्कुराने वाली, हंसने वाली और रज रज के हंसने वाली, हमेशा खुश रहे। सो स्वीट हदीका क्यानी का कोई वीआईपी डिस्को वाला गाना सुनाए। ओके जी, डन हो गया। और गुलाम नबी फ्राम दादू कहते, सिद्रा क्या हाल है आपका, शो वेरी नाइस है, प्लीज प्ले फकीर अमीर बख्श। और ओके, मैं कोशिश कयां थी तमाम भाइरन जो जेके पसंद जा गाना इन्फॉर्मेशन उन्हनि खे हलायूं प्रोग्राम में। और पटीदन खां अब्दुल मनान, तव्हां मूंखे हिकड़ो ई मैसेज कॉपी पेस्ट कयो आहे तकरीबन 4-5 मरतबा, सो थैंक यू सो मच तव्हांजे हिकु ई मैसेज जे लाइ मोहबतूं आहिनि तव्हांजो, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। और जी हमारे साथ हैं महबूब अली मोरो सिटी से, सिस्टर आपके दुआ से मदीना पाक जाने को दिल कर रहा है, बस आपकी दुआ शामिल हो। जी जी बिल्कुल, आप इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, और बहुत शुक्रिया। और गुलाम नबी फ्राम दादू, सिद्रा जी टॉपिक में जाना चाहता हूँ लंदन, लेकिन सोचता हूँ अकेले जाकर क्या करूंगा, वहां पे जाइएगा, घूमिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, उनका अलावा चाचा खालिद हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम बेटा सिद्धो, कीअं आयो, खुश आयो, सफा खुश बाज तां ॿुधाए कीअं आहियो चाचा। और कहते हैं अच्छा तव्हां काफ़ी अच्छा, चलो गानो लिखियो आहे, सही सही सही सही सही। और ये हमारे साथ ही, हाय सिस्टर आप कैसी हैं, ये मोहम्मद अली जोगी फ्रॉम रूहल फकीर। ओके, ये गाना है या पता नहीं, मुझे बात समझ नहीं आई, वेल आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिएगा। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ कहते हैं आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको। जी वालेकुम अस्सलाम आपको, ये मौजूद है, हाय हेलो हेलो रेडियो जोकी, हम जापान से आपका शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस वॉइस, योर नेम प्लीज, माई नेम जे एंड योर नेम, माई नेम इज सिद्रा मुस्कान, और जे भाई आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा, ये जे भाई क्या कहते हैं, जे भाई लिखते हैं वेरी नाइस जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और इस अच्छा इज हाईली रिकमेंड फॉर एनी वन लुकिंग टू इनहेंस देयर सुपर ग्लो, ट्राई एंजॉय ब्यूटी, थैंक्स ओके ऑल। जी जी सब कुछ ओके है, और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं, तभी आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के कितने सारे फायदे मिल सकते हैं। और ये हमारे साथ ही जयपाल भाई कहते हैं कि माना के हुसन के बादशाह हो तुम, मगर हम सादगी में कमाल रखते हैं, जाए बुदा कसम दे कोट नगा लाए जा। अच्छा चले, ये हमारे पास एक लिस्ट में जरा गाना मौजूद है, तो मैं साथ साथ जरा आप लोगों को गाना भी सुनाती रहूंगी। और जयपाल भाई कहते हैं कि बड़ी तलब थी सनम को बेनकाब देखने की, दुपट्टा जो गिरा कम वक्त जुल्फे दीवार बन गई, क्या बात है जी क्या बात है, वड्डे आए तो सी शायर।

साथ हमारे फजली हैं और फजली कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून. ओके जी, प्यारी फजली को वेलकम कहते हैं. इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, हथ मत है क्यों बाबा. अच्छा, हिदायतुल्लाह कहते हैं कि लाइफ तो सही है लेकिन लाइफ खराब है. लाइफ को क्या हो गया भाई, लाइफ को ठीक कीजिए. वैसे लाइफ किसी की भी ठीक नहीं होती, उसको ठीक बनाना पड़ता है. अली गुलाम बिरोही भाई हमारे साथ कहते हैं, आपका शो कराची से एंजॉय कर रहा हूँ, सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच. अली गुलाम बिरोही, किशोर भाई कहते मतलब आज आऊं खामोश रहा. चाहते हो तो आज नेटवर्क है. और कहते हैं कि अगर इंसान का मकसद जगह ते वञे न तो पांजे खर्चे ते वञे. मुझी सोच या है बाकी जी खबर कोने का. या सही गाल है. वैसे मुखे भी लगंदो आ इन जमाने में इंसान केंजो भी थोरो न खणे, वो चाहे एक रुपए जो ही छो न हुए. खुद कहीं अपने लिए सब कुछ, क्योंकि बाद में फिर जो सुनने को मिलता है ना वो सुना नहीं जाता, तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है. अच्छा, दर्दी दिल कहती है टॉपिक में तुर्की. वैसे ये टॉपिक एक फन के हिसाब से लिया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छे से आप जो टॉपिक को फॉलो करते जा रहे हैं सारे लोग. और यहाँ पर आप लोगों की पसंद के गाने भी हैं जी. ये इतना छोटा सा गाना था, जल्दी नहीं खत्म हो गया. चलें कोई बात नहीं, ये दूसरा गाना हमारी लिस्ट में है. और

अच्छा चाचा तव्हां जो जेको टॉपिक वारो कॉमेंट हो न उहो ऊपर भॼी वियो सो तव्हां हुनखे अगरि दोबारा कॉपी पेस्ट करे सघो था त महिरबानी कजो ठीकु आहे। अब्दुल जी केसर हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहते हैं और दर्द दिल कहती है मैं और अलीजा आपका शो सुन रही है साथ में, बहुत शुक्रिया स्वीटी दोनों को वेलकम कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि शो में रश होती है तो मैं अंदर नहीं आता, बाहर बैठ के आपका शो सुनता हूँ रोज। ना करें भाई, एक दो कॉमेंट तो आप कर दिया करें। नहीं ज्यादा नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा कमेंट कर, एक दो कर दिया करें, मुझे पता हो कि भाई कौन कौन हमारे साथ मौजूद है।

अगर मगर चल रहा है इधर तो मुजाहिद मलिक हमारे साथ कहते हैं सिडो शो नाई से प्लीज आज जीशान रोखड़ी का सॉन्ग सुना दें। बिल्कुल जी आपको सुनाते हैं। वैसे गाना चलाने में मुझे कोई मसला नहीं, गाना बस अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मेरे प्रोग्राम में सूट करे। और फरमाइश है जी लाजमी वरना में चलें जी बिल्कुल, वैसे भी आपका गाना लगाएंगे, आपने अच्छी फरमाइश कर दी है। मोहम्मद पन्हा हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बहन, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। मोहम्मद फारूक खोसो गोठ नसर दीन खोसो कश्मोर में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच भाईजान, आपको वेलकम हो गया। मोहम्मद मीरन जखनानी भाई हमें सुन रहे हैं जेका बाबा से, थैंक यू। रमजान भाई आ चुके हैं, रमजान भाई आपको भी वेलकम हो गया। और कहते हैं कि इंसान की खूबसूरती का ताल्लुक उसके जाहिर से नहीं बल्कि बातिन से है, हर वो शख्स खूबसूरत है जो एक खूबसूरत और बाएखलाक दिल का मालिक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे ना जो क्रीमें नहीं लगा पाते तो चलेंगे आप डी स्किन फेस वॉश का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन का जब फेस वॉश यूज करेंगे ना तो ये भी बहुत अच्छा खासा आपके चेहरे पर जो है ना वो रिजल्ट दे जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तो बात ही कुछ और है बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो सोना सोना थी वनो, पांजी खूबसूरती जो ख्याल रखो, ये हमेशा महकंदा रहो गुलाबन जिया।

ओके जी, दर्दे दिल कहती है कि बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है, जैसे ही आता है फालतू के लोग चले जाते हैं। बिल्कुल या सही गाल कही आता हूँ। टॉपिक कहती है मैं तुर्की जाऊंगी। अच्छा, अच्छी बात है, तुर्की जाए। वैसे तुर्की जाना आसान है, इतना कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता मुझे लगता है। और ये हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे मुस्कान, पूरी दुनिया आगे जा रही है और हम पाकिस्तानी 1980 में, मतलब आगे बढ़ना हम चाहते ही नहीं है। सही गाल असांखे वधणो ही न आहे बाबा, अॻिते असां 1980 में वेंदासीं। लेकिन मैं एक वो वाहिद इंसान हूँ जिसने मतलब कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया। मुझे पता नहीं क्यों ये ट्रेंड्स जो है अजीब से लगते हैं। मैं बस देखती हूँ, कहती हूँ भाई इड़ा वांदा मानू भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया, इस चीज का गुरूर है। और ना कोई एक चीज बस मार्केट में आ जाए तो वाह, सब उसके पीछे पर जाते हैं। कुछ डिठो ही कौन था। चलिए, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिएगा, ठीक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर टाइम भी हुआ चाहता है जी, हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाए। हाँ, असा भी पांच गाल ब्रेक दियूं बाबा, ही तवा इतने बैठा हो जो कारी ने वजो। हाँ, ओही वनी ओही मोटा थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरती हासिल कीजिए।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसल

0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 3135525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

हाँ जी मेरा रांझणा, क्या बात है, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जनाब, और डी स्किन फेस वॉश ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो जरा। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो लोग स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आके मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं आपका कोई ऐसा फेवरेट आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप जाना चाहें, और अगर आपको कोई मुफ्त में वहाँ पर भेजे तो आप मुझे बताएं आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि फ्री में तो भाई बस होने चाहिए। ओके, सो तुम टॉपिक ते गालायो ना खानावा पोस्ट के तमाम लाइक एंड शेयर करना वनो, ठीक है। जगह सोना मानो सा अगर फेसबुक ते मौजूद आए पोस्ट के जरा लाइक एंड शेयर करना हलो। उन के अलावा मां तमा की बुधाया थी, अगर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करन चाहियो था या वरी हां मार्केट में डी स्किन फेस वॉश भी अवेलेबल थी वयो है, तो डी स्किन फेस वॉश अगर तमा इस्तेमाल करन चाहियो था तो उन जी बारे में भी थोड़ी तमा के नॉलेज हुजन जरूरी आहे। तो डी स्किन फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल आहे, अगर तमा क्रीम का थोड़ो अवॉइड करना हो तो तमा डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल करे सगो था। डी स्किन फेस वॉश जो है तमाम जबरदस्त क्वालिटी जो फेस वॉश आहे बाबा, हर स्किन के मथा सूट करण वारो प्रोडक्ट आहे, आई हर स्किन के सफाई वीआईपी बनाए छड़ी दो। आई तमा जी स्किन अगर एडिया है बाबा कोई भी प्रोडक्ट जल्दी सा इजीली तमा जी स्किन ते जेको मैच नाही करी सकंदो तो ता डी स्किन फेस वॉश ट्राई करी दिसो। आई डी स्किन फेस वॉश जेको हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल आहे, तमा जी स्किन जे अंदर ताई वेंदो, तमा जी स्किन के हाइड्रेट कंदो आहे, तमा जी स्किन के डीपली क्लीन कंदो आहे, तमा जी स्किन के मॉइस्चराइज भी रखंदो आहे। सो डी स्किन जो फेस वॉश तमा हाने किथा भी वनी बसानी परचेज करी सगो था। आई डी स्किन जो फेस वॉश न मिली तो पोई तमा के डायल करनो आहे जना बस 03। हाँ जी जनाब 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 970 आई बियो नंबर आहे 033-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ये नंबर आहे जेते तमा राबतो करे इजीली पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सगो था। सो डी स्किन फेस वॉश भी बाबा तमा जे खूबसूरती के चार चंड लगाए छडी दो, डी स्किन जो फेस वॉश तमा लाजमी ट्राई करी दिसो। आई तमा अगर कोई भी सुठो फेस वॉश यूज करण चाहियो था या फिर तमा के कोई भी साबुन में या फेस वॉश में तमा के खबर ना पंदी तो बाबा केड़ी चीज असा स्किन जलाए जरूरी आहे, तो ता डी स्किन फेस वॉश एक मरतबा ट्राई करी दिसो। मतलब एतरो जबरदस्त प्रोडक्ट आहे सफा, तमा के चवंदम त बाबा हर एक चीज के फिटी करे ता डी स्किन जो फेस वॉश ट्राई करी दिसो, यकीन जाने आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये इतनी प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जान जाएंगे कि वाह जी वाह, गाल में दम आहे। डी स्किन जो फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम बई चीजों गड लगायो, पानी खूबसूरती का ख्याल रखो, तान रखना तो केर रखंदो, सो तये तमा जी स्किन डिजर्व करे थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। नमले तो नंबर 13 रातो करे वटजो, आई पानी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वटजो।

अच्छा जुल्फकार अली खोसो हमारे साथ कहते हैं हाय सिद्रा मुस्कान जी। अरे नाम बोलो। अरे आपका नाम है जुल्फकार अली खोसो भाई, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा स्मार्ट भाई, उस गाने के जो शायर थे ना, वो मेरे ख्याल में वो नहीं है जिसने अभी एक होटल खोला है, कौन है, जागीरानी, इरशाद जागीरानी। बिल्कुल वही थे।

बिल्कुल जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां वठी अचो बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ा वी आई पी गोरो चिटो बणाए छॾींदी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते कोन थी मिले त बाबा नंबर छा लाइ ॿुधायां थी, नंबर ते राबितो करे वठो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए वठो, क्योंकि जनाब खूबसूरती को मज़ीद निखारने के लिए अपनी रोज़मर्रा ब्यूटी के रूटीन में आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मज़ीद खास बना देगा और आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी, आपकी जल्द जो है ना वो इतनी प्यारी हो जाएगी कि लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे और आपसे पूछेंगे भाई बताएं तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उन्हें बताइएगा जनाब ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। तो अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन को बनाए मजीद खूबसूरत, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, अपनी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए डी स्किन फेस वॉश का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन ब्यूटी सोप हो, दोनों चीजें नहीं बल्कि फेस वॉश हो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये दोनों चीजें मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए।

अच्छा जयपाल भाई लिखते हैं कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। सलाम भाऊ। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाऊ। और कहते हैं और भाऊ ओके हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। और गांवर खान हमारे साथ है खैरापुर मीरत से, आप हमारा शो सुन रहे हैं। शायद आपका नाम में थोड़ा गलत रीड करूं तो उसके लिए माजरत करते हैं। और हमारे साथ है जी माहीन बलोच, कहती हैं अच्छा आपने ओएसटी की फरमाइश कर दी, अगर आप मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो आपको ओएसटी हम सुन लेंगे, ठीक है। और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सिडो सॉन्ग मिला आपको मेरा? आपका गाना सच्ची बताऊं तो नहीं मिला मुझे। और जयपाल भाई कहते हैं कि भाऊ आपका टॉपिक पर क्या जवाब है, जरा हम भी तो सुने। मेरा जवाब तो बिल्कुल यही होगा, अगर फ्री में क्या मतलब, मैं तो खुद ही जाऊंगी। फ्री वाला तो सीन खैर हमारी जिंदगी में नहीं है। वैसे अगर चांस मिल जाए या फिर ऐसा कोई सीन हो जाए तो सबसे पहले सऊदी अरब आ जाऊंगे, क्योंकि मेरा एक फेवरेट मतलब ये है कि मैं जाऊं वहां पर, हर एक चीज देखूं, हर सारी चीज वहां पर विजिट करूं, इतनी सारी चीजें ये वहां पर कि बस वहां जाए और खो जाए, कभी वापस ना आए, बस यो दिल चवंदो है। और कहते हैं टॉपिक भाऊ ऑस्ट्रेलिया सिडनी सिटी जाएंगे जरूर। जी जी इंशाल्लाह जाइएगा, खुशी के साथ जाइएगा। खुशी के साथ मतलब हैप्पी होके जाइएगा और हमारी भाभी खुशी के साथ जाइएगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन।

चलो यहाँ पे सही गाल टाइम ते अगर पांच गलती जो एहसास थे तो यहाँ पे सुठी गाल हुंदी आहे। अच्छा फरवा कहती है आप ही आज आपको सॉन्ग की तकलीफ नहीं दूंगी, बस आपका शो सुनने का दिल करता है, बस ऐसे ही रहा करें आप, आज नहीं बस कल परसों जब भी आए तो गाने की फरमाश मेहरबानी करके थोड़ी कम किया करें, मैं सबको बोलती हूँ। और किशोर भाई कहते हैं तुझे शोला ही गाना सही है ना, हानी एड़ा गाना फरमाइश करना करो। और रिजवान अली कहते हैं बहन कैसी हैं आप, आपका शो नाई से जबरदस्त शो लाजवाब। अच्छा आपने लिखा है कि ईरान जाएंगे, ओके ओके बढ़िया हो गया। अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाऊ आपने फिल्टर जरूर इस्तेमाल किया होगा, बाबा हाँ फिल्टर की जरूरत ही कोन है, सो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सफा वीआईपी थी व्यायो सो तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए तक भी फिल्टर की जरूरत कोन पवी। और अदो चे तो इन हिसाब का तू ढो बोरिंग मानुस आए मुख्य भी लगन है इतने मां जड़ी तक लगा थी पर्सनल अगर तुम मिलो तो मैं इनका सफा मतलब चेंज आया मैं ढो मूडी मानू आया सो जी भी जिंदगी में ट्रेंड आया है मु करें ट्राई को कया जेके छोकरियों मतलब किरी पवन जो भी ट्रेन इन कश्मीरी चूड़ियों आयो हल बा यो स्टैली आयो जग खी घुमंदी वतन पयो हल बा वरी यो बो वारो बुरको हले यकीन जानो एक भी चीज को वरती मुख्य अलग इरिटेशन थी जडे सभी मानन के उ चीजू होंद अस थोड़ा अलग नेचर जहा मू आयो सो अस चाहे वो कम हरगिज न करो सब कन पाया तो समझो था घुर्जे बाबा खबर हो जाए मुल्क जाने जी छापे वाले मुल्क जाने में उनके अलावा हिदायत ला कहते वैसे सिद्रा मैंने भी एक हाँ हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रही है। और अब्दुल गफार भाई कहते लाजवाब शो मेलसी से आप हमारा शो सुन रहे हैं जी बहुत शुक्रिया बढ़िया। सालार सिकंदर कहते हैं सिस्टर जी हम एक सॉन्ग अच्छा गाना सुनना चाहते लेकिन गाना कौन सा ये तो मुझे समझ ही नहीं आया सो थैंक यू जी थैंक यू। और जियाउल्ला खान हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम जियाउल्ला खान जी। और ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक है जी जो कि हम एंजॉय करें, काफी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था ये वाला गाना भी सुनेंगे तो ये गाना है ऐसा कि इसको लास्ट में सुना जाए तो बस आप सब लोगों को डेडिकेट होगा जिनको अच्छा लगेगा। और ये क्या कहते हैं कि शाम वाले शो में चलिए जी डन हो गया ओके जी ओके बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए ठीक है। तापी दार साइया जा तापी दार जी हजूरी करण वारा हर वक्त।

ओके जी, जिन लोगों ने अभी तक पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दी जरा, और आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप वहाँ से जाएं तो आपके लिए आसानी हो जाए, बस परचेज करें और इस्तेमाल करना शुरू करें, ठीक है। और मम्मा समान कहते हैं शमन भा खर्च करता जरूर इंदो बाकी या भी गाला है। साजिद अली भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। और ये रमजान भाई बहुत शुक्रिया, आपने शायरियां भेज दी है सारी सारी, इतनी सारी। और ये दो कहते हैं कि हाँ ना अदा जड़े केर फ्री में घुमाण मोकले तो एड़ी कंट्री जो नालो वठे जेको सब खां महंगो हो जे। सब खां महंगो लंडन था वाला, एडो महंगो तो छा बुधायो। अगर एड़ी गाला तो लंडन वनो, बाकी अगर दिल से गाला तो पुर जारे ताजे दिल से ओडा हल्या वनो, खर्च जो टेंशन न वठो साब वठो।

टाइम खत्म हो गया जी हमारे प्रोग्राम का, और ये हमारे साथ है आई एम अवेश फ्रॉम सखर से, पहली बार प्रोग्राम शामिल हो रहा हूँ आपके भाव हो सके तो मुझे अहमद मुगल का पहली मर्तबा इतनी देर से आए तो गाना तो प्ले हो ही नहीं सकता था, तो बहुत शुक्रिया आपको, दिल से वेलकम कहते हैं, आपका गाना कल या परसों लगा लेंगे, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ है। और जयपाल भाई थैंक यू इतने सारे मैसेजेस के लिए, और बाकी बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया जो जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिनके फीडबैक्स दे चुके उनसे माजरत कर देते हैं। अखलाक भाई लास्ट में प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया। नसरुल्ला जतोई भाई आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ है। सो वरी तव मुखे ज्वाइन कजो 5 बजे वाली प्रोग्राम में, यानी पूरे 5 बजे खां वठी 6 बजे ताईं तव्हांजो संजो साथ हूंदो आहे प्रोग्राम में। सो पंहिंजो हेॾो सारो ख़्यालु रखो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश जो यूज़ कंदा रहो बाबा, ख़ूबसूरती ॾाढी ज़रूरी आहे। सो मोकिलाणी नाहे सिन सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वड़ा वजीर एहतियाजन लाइ हाईकोर्ट पीटीआई जी लांग मार्च खिलाफ दाखिल दरख्वास्त ते फैसलो बुधाए छडियो. अदालत चयो आहे त कंहिं बि सरकारी मुलाज़िम खे एहतियाज में शरीक थियण लाइ मजबूर न कयो वञे. सूबाई हुकूमतन एहतियाजन लाइ सरकारी वसीलनि जो इस्तेमाल थियण न ॾियनि. कंहिं सियासी जमायत या अॻवाण खे बि शहरनि जे चुरपुर आॾो रंडक विझण जो इख़्तियार न आहे. इस्लामाबाद इंतिज़ामिया ऐं घरू वज़ारत चीफ सेक्रेटरी आईजी खे हिदायत ते अमल खे यकीनी बणाइण जी हिदायत कई आहे.

0: आप सुन 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के होतली की है,
0: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
2: 90.4। कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331

0: 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। जीए FM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: आबना और उस बाबत विचो भर जे मुल्क न ईरान जो अजो को रिथल इजलास मुल्तवी ओमान ईरान इजलास मुल्तवी थिन दी तसदीक करे छडी ईरानी परदेही वजारत जे तर्जमान इस्माइल बकाई चयो आए त सऊदी अरब जे दरख्वास्त ते ओमान में अज रिथल इजलास मुल्तवी थियो आए सऊदी अरब जे तेल पे तेल पाइपलाइन ते हमले में भी ईरान मुलविस न आए ईरान ऐं विचो भर जे मुल्कन में शिकत आण जो फ़ाइदो रुगो इसराइल खे थियो आहे यमन जंग सां को बि तालुक न आहे को कुलंग जबल में बि एटमी सरगर्मियूं वारियूं ख़बरूं कूड़ियूं आहिनि वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह 1 अक्टूबर खां फ्लोर मिल्स खे सरकारी कणक जारी करण जी हिदायत करे छॾी कणक ज़खीरो कंदड़ ख़िलाफ़ कारवाई तेज़ करण जो हुकुम वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सूबे में कणक बाबति इजलास सूबाई वज़ीरनि ऐं ॿियनि जी शिरकत सैयद मुराद अली शाह चयो त हुकूमत जी पहिरीं तरजीह शहरनि खे सस्तो अटो फराहम करणु आहे कणक जे ज़खीरनि ऐं विरासत लाइ निगरानी वारो निज़ाम बरक़रार रखियो वञे शहरनि जो गिज़ाई तहफ़ुज़ यकीनी बणायो वञे

0: गरीब ऐं पोरियत तबिके खे महांगाई खां बचण लाइ वज़ीर आज़म पेट्रोल ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो। कोशिश हूंदी त वधि खां वधि शहरनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। वफ़ाकी वज़ीरनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त पहिरें मरहले में शहरनि खे NIC नंबर मोकिले रजिस्ट्रेशन करणी पवंदी। ॿिए मरहले में गाॾीअ जी रजिस्ट्रेशन थींदी। टूल वेयर लाइ 20 लीटर ऐं नंढनि गाॾियुनि लाइ 30 लीटर ताईं ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान में हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। 9 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मस्तूंग में दहशतगर्दनि जी गाॾीअ खे क्वाड कॉपरेटर ज़रिए निशानो बणायो वियो। कार्रवाईअ दौरान दहशतगर्द कमांडर नकीब समेत 3 दहशतगर्द मारिजी विया। पश्चिम में CTD जी कार्रवाई जे नतीजे में 6 शकी दहशतगर्द मारिजी विया। CTD तर्जमान मूजिब ऑपरेशन दौरान 4 अहलकार बि ज़ख़्मी थिया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो तालक पाबंदी मरियल तंज़ीम सां आहे। अदालती आज़ादीअ सां गॾु एहतसाब ज़रूरु आहे। सुप्रीम कोर्ट में नंबर खां पहिरें केस मुक़ररु करण वारे जवाबदार बि ख़तम करे छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यया आफरीदी तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त हर तकरार जी पुॼाणी अदालती फ़ैसिले ज़रिए थियणु ज़रूरी आहे। अदालतुनि में केसनि जी मुक़ररी जो समूरो तरीक़ेकार तब्दील करे छॾियो आहे। हाणे टेक्नोलॉजी ज़रिए केस मुक़ररु थींदा आहिनि। केसनि जी शरह बि घटी आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ा ख़िलाफ़ हैदराबाद में उमेदवारनि शागिर्दनि जे एहतजाजी कैंप 53 ॾींहं में जारी। मेरिट जे बहाली लाइ भुख हड़ताल बि जारी। ACUP वफ़द जी यकजहती तौर भुख हड़ताली कैंप ते शिरकत। खेरपुर में बि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी मेरिट जी लताड़ा ख़िलाफ़ शागिर्दनि जी रैली। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खेरपुर में स्टूडेंट्स अलाउंस पारां एहतजाजी रैली कढी वई। मेरिट बहाल करण जो मुतालबो। खिपरो वेझो अॻूणो सूबाई वज़ीर ऐं ज़मीनदार हसन अली चाहियो मुबैना तौर अॻुवा। शहर में शटर बंद हड़ताल। ॿिनि गाॾियुनि में सवार हथियार बंदनि बंगले ते काह करे तशदुद बाद ज़मीनदार हसन अली चाहियो खे अॻवा करे विया। वाके बाद शहर में शटर बंद हड़ताल। अॻूणे सूबाई वज़ीर हसन अली चाहियो खे कंहिं अॻवा कयो। पुलिस बेख़बर। मेयर वेझो ज़मीनी तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल। कचे तरफ़ वेंदड़ ॻोठ ॼाम खान भट वासी ज़फ़र भट खे पतण ते गोलियूं हणी क़तल कयो वियो। वारसनि जो चवणु आहे त जहिड़े सां को बि वास्तो न आहे। नौजवान खे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त ज़मीन जे मालिकियतां आलमाणी ऐं जतोई धुरियुनि में तकरार हलंदड़ आहे। बदीन भरिसां हथ आयल ॿोरी बंदि लाश जी सुञाणप थी वई। मीरवा भरिसां मिलियल लाश जी सुञाणप टंडरो बागो वासी हाकिम शाह जे नाले सां थी। पुलिस मूजिब मक़तूल खे पुठियां गोली लॻल आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद वधीक ख़बर पवंदी। मामले जी जांच जारी आहे। काज़ी अहमद वेझो मीर रुकण शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ नंढनि आबाद घरनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। आबपाशी अमलदारनि ते पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। आबाद घरनि मूजिब मीर रुकण शाख जे पुछड़ में पाणी न पहुचण सबबि फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी विकिरो कंदड़ अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे पुछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। दादूअ में ॿ नौजवान पुलिस हथां गिरफ़्तारीअ बाद मुबैना तौर गुम। वारसनि जो औरतनि ऐं ॿारनि समेत एहतजाज। बाईपास वटां सागर अली भंड ऐं शाह ज़मान लगारीअ खे गिरफ़्तारीअ बाद गुम कयो वियो। मुख़्तलिफ़ थाणनि ते ॻोल्हा बावजूद नौजवाननि जो पतो न पियो। वारसनि जो औरतनि ऐं ॿारनि समेत एहतजाज। नौजवाननि खे आज़ाद करण जो मुतालबो।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
1: ऐं हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
1: जी हाँ, 2315-2575-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
8: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए,
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
8: ऐं हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
8: जी हाँ, 2315-2575-786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har din, har peher, zindagi ki leher. GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9:30 to 6:30 शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, जीए एफएम 88 नेटवर्क। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
3: मातली है आसपास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी। मातली है आसपास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो जीए एफएम 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
9: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
9: जी हा, 2315525786।
8: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

छाखे वञो छो बेली थिए बियन जो वठ कंजक करीम जी जग जो वाली जो सौखो हूंदो सो जंहिंजो इश्क अल्लाह सी। सोहारी सिंध जे मलूक मिटीअ ते रहंदड़ तमाम मौज़िज़ ॿुधंदड़नि खे लाखीणे लतीफ़ जी ॿोली, महिराण जी छोली ऐं मिठड़ी अमड़ जे लोली जहिड़ा सुहिणा सलाम। GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम टीम जा कुर्ब कबूल पवन। मौज़े सामईन, अवां जा कहिड़ा हाल आहिनि? अवां खुशबाश आहियो? अवां ठीक ठाक आहियो? अवां चाक चङा भलाई मतारा जोड़ आहियो? असांजी दुआ आहे त सदाई तारनि में चंड हुजो, खीर में खंड हुजो, मेवनि में अंब हुजो ऐं कॾहिं पवां जी मुर्क मेरी न थिए। सदाई अवां जे लुड़कनि जो डुकार ऐं मुर्कुनि जो सुकार हुजे। शाल अवां खे कोसो वा न लॻे, शाल अवां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, जुग जुग जीओ, मुर्कंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो। मौज़े सामईन, GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम स्टेशननि जे भर में लॻियल टावर ऐं टावर तां आवाज़ पखेड़ो उॾार करे उन्हनि समूरनि मोहबती माण्हुनि ताईं ही म्यूज़िक, ही साज़, ही आवाज़ पहुचाए पियो, जंहिं शो जो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम। सिंधड़ीअ जी अॼोकी हीअ ख़ूबसूरत शाम अव्हां जे नाम कंदे, अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान, अव्हां जो आरजे, अव्हां जो पंहिंजो, जी हा उहो ई साॻियो, आऊं आहियां यूनिस बकारी। तोसां रुअण बि ॾुखियो, तोसां खिलण बि ॾुखियो, तोॾे अचण बि ॾुखियो, तोसां मिलण बि ॾुखियो। दिल जो अहिवाल दिलबर तोखे ॿुधाइणो आहे, दिल में रखण बि ॾुखियो, त तोसां सलण बि ॾुखियो। आवाज़ नगर जा ख़ूबसूरत तोहफ़ा खणी अवांजी ख़िदमत में हाज़िर अवांजो यूनिस बकारी। यकीननि 7 वॻे ताईं जो साथ इनशाला निभाईंदासीं। अवां जेकॾहिं शामिल थियण चाहियो था त मैसेज मोकिले सघो था। टाइप करियो MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखजो। पंहिंजो नालो 888 यानी 88 81 ते मोकिलिजो। पहिरीं कलाक में तव्हांजा मैसेज शामिल कंदासीं ऐं ॿिए कलाक में तव्हांजूं लाइव कॉल्स शामिल कंदासीं। हाणे अव्हां जी मर्ज़ी आहे, तव्हां मैसेज मोकिलण चाहियो था ऐं मौजूदगी जो अहसास ॾियारण चाहियो था त हाणे ई मोकिलियो। तेसी ताईं हलूं था हिकड़े सदाबहार आवाज़ ॾांहुं, हिकड़े अहिड़े आवाज़ ॾांहुं जीअं आवाज़ में जेको ट्रैक ॿुधायूं पिया उहो दुआया आहे, मोहबतनि वारो आहे। अचो त गॾिजूं था।

वेलकम बैक मौजूद सामाइन, ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM मातली, GAFM मेरप्रकाश, GAFM मटियारी, GAFM सकरंड, GAFM मोरो, GAFM मेहरापुर, GAFM सखर और GAFM लाड़काने जो गदिल आवाज। हाजिर है अवजो पैं शो जो बुध पा उन शो जो नालो है सिंधड़ी की शाम। मेजबान अवजो आरजे अवजो यूनुस बकारी अवसर मुखातिब है। जैसे अव शामिल थे चाहो था जो के शो में तो टाइप करो MTI स्पेस दिए गोठ शहर जो नालो लिखो पैं नालो लिखो 888-88-81 से मैसेज डारे मोकलो अज असंदी तो असा गड केर हों। ओके जनाब नंढड़ो अजब अली असि बुधे पे नंढड़ो अजब अली नंढड़े अजब अली ए खासके अली साहब तुम तमाम घड़ी मेहरबानी लख तो अवजा ऐं अवां असांखे जॉइन कयो आहे। अवांजो मोहबतूं ऐं भलीकार चवंदासीं तव्हांखे।

नज़ीर असांखे ज्वाइन कयो आहे, तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी। नज़र मोहम्मद जत असांखे ॿुधे पियो, उहा जी महिरबानी। नंढड़ो मोहम्मद हसन जत असांखे ॿुधे थो, उहा जी मोहबतूं। ॻोठ मोहम्मद रहीम जत खां थैंक यू भलीकार।

मज़ समीन साथ ऐं आवाज़ जे साथ में तव्हां जॾहिं टाइप कयो त एम टी आई लिखजो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो, ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो।

जी लशारी साहब अमोट फार्म का बुद्ध था वेलकम बलिकार जी मज समय नवा केड़े शहर गोठ वाहण वस्ती का बुद्ध पिया जे शहर इलाके वाहण वस्ती का बुद्ध पिया बुधाए सको तो उते मौसम की है गर्मी है या मौसम नॉर्मल है चकाने जो केतरन इलाकन में गर्मी की शिद्दत है केतरा ही अड़ा इलाकन जिते बरसात वसी है जी स्पेशली कराची वारन इलाकन ठटे सुजावल वदीन थरपारकर इलाकन में बरसात वठी है।

सजण सांगी जी वांड मिठीअ मां गुलाब गुल असांखे ॿुधे पियो। गुलाब गुल वेलकम चवंदासीं अव्हांखे, भलीकार, थैंक यू। जी जना मेहरापुर खां इंतज़ार हुसैन जो मैसेज पहुतो, वेलकम चवंदासीं इंतज़ार, भलीकार, वेलकम।

जी जनाब, फकीर आमिर झिंझी असांखे थरपारकर में नोहटे जी नगरी में ॿुधे पियो। ऐं फकीर आमिर झिंझी ॿुधाए थो त उते हींअर बरसाति वसे पई ऐं माहौल ॾाढो ज़बरदस्त आहे, ॾाढो ख़ुशबूदार माहौल थी वियो आहे ऐं थर खे हुई बरसाति जी ज़रूरत आहे। सो फकीर आमिर झिंझी साहिब, तव्हां ॿुधो था तव्हांजा वॾा वॾा मोहबतूं। फौज़िया जो गानो गॾिजी ॿुधूं था ब्रेक खां पोइ, बाक़ी बिना ब्रेक ॻाल्हियूं कंदासीं।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC, घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मटे जॾहिं असां खां सितारा हलिया विया, ॾिसी वक़्त नाज़ुक प्यारा हलिया विया, वॼे बांसुरी थी नथी कोयल कूके, मोहबत संदा साज़ सारा हलिया विया, घुरबो हो फिको पाणी त मिलंदो मिठो शरबत हो, उतां अॼु मुसाफ़िर उञारा हलिया विया, उतां अॼु मुसाफ़िर उञारा हलिया विया। वेलकम बैक मौजूद सामेन, GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियोस मां शो ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम, ऐं अवांजो आरजे वञो मेज़बान असां मुखातिब आहे यूनिस बकारी, समूरियूं मोहबतूं प्यारे पंहिंजा पवां जे नाम।

इंतजार हुसैन राजपर साहब ज्वाइन किया तलिक सरमंद सिंधी ही सदा बुध रहो इनशाला बुधाईंदी मिठा मानू तहबानी तहे वेलकम चंदी हाँ दोस्त ओम लिखो MTI स्पेस दिए गोठ शहर जो नालो लिखो पैं नालो लिखो 888-188-81 जरूर याद कजो खबर पवी तो केर बुधे पो जी हाँ शुरू में MTI लिखण लाजमी है तो जी असो स्टूडियो जो स्क्रीन है उन मैसेज जरूर पहुंचन सोनू आराई का राशिद आराई असगर आराई कुर्बान अली तांजी तमाम घणी मेहरबानी मोहब्बतों एवं चौंदी भली कार खुश हो जी वज सावेन यकीनन वणंदड़ शाम है वणंदड़ शाम जी होंगी है वह ढी सुी होंगी काफ़ी इलाक में जी तक बुधा तो अपडेट किया हो तो काफ़ी इलाक में बरसात है काफ़ी इलाक में मौसम सुटी है जी असें याद किया रोहड़ी सखर का

काफ़ी इलाइक़नि जिते बरसात वसे थी ऐं काफ़ी इलाइक़नि जिते हिन महिल मौसम गरम आहे ऐं किथे सफ़ा बिल्कुलु नॉर्मल ऐं सुहिणी मौसम आहे। सो दुआ आहे त मौसम भली कहिड़ी बि हुजे पर अव्हांजी दिलि जी मौसम ॾाढी शानदार हुजे। मातली खां सोनू उमेर अली माछी साहब मैसेज पियो अवली कयो था, सलाम वालेकुम। सलाम मिठा माण्हू, कुर्ब तव्हांजा ख़ुश जो आबाद हुजो। इहे मोहबतूं आहिनि तव्हांजूं जो तव्हां असांखे यादि कयो, कुर्ब था। उहे जनाब घड़ो बग्गो खां असांखे यादि कयो, मुमताज़ अली ख़ासि केली ऐं रियाज़ अली ख़ासि केली, उन्हनि जो तमामु घणी महिरबानी, थैंक यू, भलीकार चवंदासीं, वॾा वॾा वांजा ख़ुशि अचो।

जी जनाब असा ज्वाइन किया है हाकिम अली खास के लिए आई अलाडे तो खास के लिए मोहरम खास के लिए मुझे तमाम घनी मेहरबानी बलिकार नडी जोया एंड रियाज आई मौजम अली खास के लिए मुझे तमाम घनी मेहरबानी वेलकम चंदासी बलिकार साले ए शायला सागी गोठ का पर गोठ ना मालूम है यानी अमा पंजे गोठ लिखण विसारे छड़ियो है अमा के भलीकार चंदा से सबनी के सजे गोठ के भलीकार उनन गोठन वाहणन वस्तन में जते असन आवाज मुसाफरी तय करे पहुंचे पियो सुहारी सिंध जे मलुक मिटी जे हर गोठ में अमा जे सेहत अमा जी सलामती अमा जे सुख जो खोड़ा सारी दुआओं खणी असि हाजिर आयो शो आए सिंधड़ी शाम ए अमा जो आरजे यूनिस बकारी डोकिया का सुंबर खान लाशारी गुलाम हैदर लाशारी अमन मोहब्बत अमां के चंदासी भली कार खुश जो अली नवाज लाशारी गुलाम रज़ा लाशारी अमन तमाम गड़ी मोहब्बत अमीब डोकिया वाह जे बिल्कुल वेझो वेठा है डोकिया वाह असा जो गोठ है एक इलाको है जो चौ तरफ वा वा गोठ है उते डोकिया वाह हाने जबरदस्त शहर थी वो है जिते तक बुध था अमन मोहब्बत सदाई सुखिया हो गुलाम मुस्तफा लाशारी गुलाम सरवर लाशारी अमां बसंग ज्वाइन के वेडो क्या वाह का मोहब्बत हुई भलीकार यासीन लाशारी गुलाम रसूल लाशारी गुलाम फरीद मोहब्बत अमां जो भलीकार भलीकार भलीकार पेज अपडेट थी रो है जिस तंजा मैसेज अस तेस तीन पान हल्दी ट्रैक न जितना जबरदस्त ट्रैक अवजे गूंजे तो साज ए आवाज के साथ में ही जबरदस्त आवाज अचे तो गजी बुदूँ आवाज में है दर्द की गाल दुख की गाल दर्दन में भी यो है तो उनमें वास्ता डिना था वन जबरदस्त बाबा दर्द न दियो दर्द ईंदड़ जी उन्हें अर्ज है गजी बुदी था वो शमन वीराली आवाज शानदार ट्रैक है इंजॉय कचो

वाओ जबरदस्त ट्रैक आहे अमा इन के एंजॉय कयो पे मौसम के एंजॉय कयो पे आई गरो गडा संगे कुंडरी खा चोहन कुमार कोली याद कयो डॉक्टर अनीता चौहान संगीता पारस आई पक्को मोड़का असा के सेठ लालचंद कोली भी दे पे ता लिखे तो कुंडरी में बरसात आहे वाओ जबरदस्त आई असी अमा के बरसात यु मुबारक हुदा दियो दोस्तों मेहरबानो कदरदानो मौसमियत खाते एक कथी कई है जे में मुख्तलिफ जके इलाका इन मुल्क जा उन इलाकन में बरसात 13 तारीख का 15 तारीख जी अगकथी थियल है दुआ है तो यह बरसात सभी के लिए सुठी साबित थिए सुठो सोण।

इन ट्रैक के ॿुधंदे ॿुधंदे कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हूंदो जेको वठंदासीं 45 वारो ब्रेक हूंदो हुन खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं असां खोड़ ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि ऐं यकीन उहा ॻाल्हियूं असांजूं बर्दाश्त कंदा आहियूं ऐं असीं बि तव्हां सां कंदा आहियूं ॻाल्हियूं सो बाक़ी सवा कलाक जो साथ आहे असां सां केरु हूंदो इहो ॿुधाईंदासीं तव्हांखे हिन ट्रैक

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे.
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शरायत जवाबित लागू हैं.
4: मातली है आस पास की अवाम अलै खुशखबरी. मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं. नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली. राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163.
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली.

वेलकम बैक मौजूद सामेन जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क की पेशकश अवे पैं शो है सिंधड़ी की शाम सिंधड़ी शाम में अवे मेजबान यूनुस बकारी मुखातिब है जिन जिन इलाकन वाहिणन वस्तियन वस्तियन में असो आवाज गुंजार कर पहुंचे पे सभी के भलीकार चौंजो मोहब्बत तुम्हारा गड गड शामिल आ जी जनाब असा के जामोट फार्म का ज्वाइन किया है मुश्ताक अली लाशारी बाबू समू बाबू लाशारी रजब समू अवे तमाम घड़ी मेहरबानी अवं सभी गजी शो बुध पे शो ते वणो है मौसम के मुनासिबत से प्रोग्राम सुठो तो लगे अवं तारीफ एतरी घनी कई है असि उन तारीफ ते अवे तौराए तीन भी यही चई सकूं था अवजी मोहब्बत अवे मोहब्बत में यकीन इन शो में अवं पे दफो शामिल थे आया ही अवे ब्यूटियों गड गड मैसेज पौतो है असि अवं वेलकम भलीकार था चाहूं बदीन का बखर सीराणी का सखर किंजर का कारूंजर केटी बंदर का कश्मोर इंटरनेट थ्रू लाड़काने का लाहौर मटियारी का मेहरापुर मेहरापुर का मोरो सकरण का साहिवाल तई जिन जिन इलाकन तई असो आवाज कनाए तो वे सी सिंध के भलारी भूह वतन अजीज पाकिस्तान के मिट्टी से मोहब्बती मानन के एक दफो बेहर सिक भर सलाम जर अव बुधा जो शो तो शो में शामिल थे बस ही असो आखिरी दहन मिनटन जवाने मैसेज शामिल कदी उन कॉल्स जो प्रोग्राम शुरू कदी कॉल नंबर तक जरूर बुधाई फिलहाल अवं हिं जो मैसेज टाइप कर वो तकड़ो तकड़ो MTI लिखो थोड़ो स्पेस दियो पैं गोठ शहर नालो लिखी पैं नालो लिखो 88 81 888 मैसेज दियारे मोकलियो कौसर बुरडे साहब जो सिटू आन तो तोसा जी रूह जा राबता वधंदा व्या तोसा जी रूह जा राबता वधंदा व्या ती तुंजा जाबता वधंदा व्या तोसा जी रूह जा राबता वधंदा व्या ती तुंजा जाबता वधंदा व्या नाऊ जिन जो बुधी मुझो अंदर थे सड़ियो हा नाऊ जिन जो बुधी मुझो अंदर थे सड़ियो तिन सा तुंजा वास्ता वधंदा व्या तिन सा तुंजा वास्ता वधंदा व्या जी जनाब साथ आवाज साथ जबरदस्त ट्रैक है जी बुधी तो वूँ उन ब्रेक का वापस अची असा गाल फिलहाल ही जबरदस्त ट्रैक है बिना ब्रेक यूनुस बकारी की वापसी होंगी तेरे केदा न वो बस अवे ट्रैक सनम मारवी जो आवाज प्ले कें पे बुधी वो भला

जी जना वेलकम बलिकार खुशामदीद जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के स्टूडियोज में अवां शो बुधो पिया सिंधड़ी जी शाम आई अवां जो आरजे अवां मेज़बान तासण मुखातिब है यूनुस बकारी। सो दोस्तों महरबानो कदरदानो साज़ आवाज के साथ में यकीन असो साथ हमेशा सते वगे ती हों पर असा वट जी मेल ही मा मुखातिब आया असाजी जै स्टूडियोज में लाइव आया वो स्टूडियो है मातली जी एफ एम 88.90.4 जो उन स्टूडियो के बारा शदीद बरसात जारी थी वही है उन बरसात के महसूस कदे यकीन मौसम के भी इंजॉय पे क्यों उन मुखातिब आयो। सो पाण ट्रैक बुधी था वटूं उन न्यूज़ ब्रेक हों न्यूज़ ब्रेक का असा इंदी तुम कॉल्स वन कदा ना वो साथ असो हों जबरदस्त जारी हो सारी नंढड़े ब्रेक का करूं तो अवजी यूनिस बकारी सरमंद सिंधी साहब की सदाउन के हवाओं में गूंजाईंदे वटूं तो ब्रेक।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: नारेबाजी कंदे ऐवान मां वॉकआउट सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमण चयो आहे त एमक्यूएम अॼु बि पंहिंजे पुराणी रवायत बरकरार रखी एमक्यूएम वारनि ॻाल्हि ॿुधण खां सवाइ गोड़ कयो ऐं ऐवान मां हलिया विया मुतहदा वारा मकानी चूंडुनि खां बि भॼी विया हुआ तरमीम इन लाइ कई वई त चूंडू थियण ताईं पुराणा माण्हू ई निज़ाम हलाइनि खालिद मकबूल सिद्दीकी मुस्तफ़ा कमाल ते बि इल्ज़ाम मड़िया हुआ अॼु ॿई वफ़ाकी काबीना जो हिसो आहिनि उन्हनि जा हिक ॿिए ख़िलाफ़ बयान ग़लति आहिनि त उहे माफ़ी घुरनि

कंहिं बि सियासी जमात वटि इस्लामाबाद जा रस्ता बंदि करण जो अख़्तियार नाहे। सूबनि जा वॾा वज़ीर एहतजाजनि लाइ सरकारी मशीनरी जे इस्तेमाल न थियण खे यकीनी बणाइनि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई जी लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत चयो आहे त कंहिं बि सरकारी मुलाज़िम खे एहतजाज में शरीक थियण लाइ मजबूर न कयो वञे। सूबाई हुकूमतूं एहतजाजनि लाइ सरकारी वसीलनि जो इस्तेमाल बि थियण न ॾियनि। कंहिं सियासी जमात या अॻवान खे बि शहरनि जी चुरपुरालो रंडक विझण जो बि अख़्तियार नाहे। इस्लामाबाद इंतिज़ामिया ऐं घरू वज़ारत चीफ सेक्रेटरी ऐं आईजीस खे हिदायतुनि ते अमल खे यकीनी बणाइण जी हिदायत करे छॾी।

व्याज जी शरह 11.5% ते बरकरार। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसीअ जो ऐलान करे छॾियो। स्टेट बैंक मूजिब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी व्याज जी शरह बरकरार रखण जो फ़ैसिलो कयो। ईंदड़ 3 महीननि लाइ व्याज जी शरह 11.5% बरकरार रहंदी।

सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं जारी, नव दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मस्तोंग में दहशतगर्दनि जी गाॾीअ खे क्वाड कॉप्टर ज़रिए निशानो बणायो वियो। कार्रवाई दौरान दहशतगर्दनि कमांडर नकीब समेत टे दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। पशीन में CTD जी कार्रवाई जे नतीजे में छह शकी दहशतगर्द बि मारिजी विया, चार अहलकार ज़ख़्मी थी पिया।

0: FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी जनाब वेलकम वलीकार खुश आमदीद जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के सामान मुखातिब आई जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के तमाम स्टूडियोज में शो पेश थे पे सिंधड़ी जी शाम सिंधड़ी शाम शो में यूनुस बकारी जो सलाम है यकीनन असी अवां सान अवां जो गालियों कयो पिया है हाणे टाइम थी चुको है अवां जे कॉल्स वठण जो तो लाइव कॉल्स बिल्कुल वठंदासी तवां असा के कॉल करे सको ता नंबर नोट करे वठो 03435257786 जी हां नंबर है 2044-25-786 इन नंबर ते असा के ता कॉल कंदो असी अवां जे कॉल के कंदासी शामिल जो के शो में सो अवां असा साण बिल्कुल शामिल थी सको था दिसंदासी ता जो के शो जो केर तो हिस्सो थिए त पोए उन जे लाए बिना देर जे बस नंबर नोट करे वठो 03435257786 3 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8 6 5 2 5 7 8

जी हाँ मजिद दोस्तों असा के जी जी कॉल्स कॉल्स मैसेजेस भी अच्छा शामिल कदासी कड़े शहर वाहण वस्ती बस्ती का बुध पे उते मौसम कड़ी है मौसम कि पी हले मौसम कि पी गुजरे जी मौसम सुठी है तो वाह वाह बुधाजो असा तो मौसम सुठी है या न यकीन मौसम सुठी होंगी मौसम जी सुठी होंगी तो वाह वाह वी जिते जिते बरसात पे पी उन समूर मारवाड़न जहांगीड़न सांगेड़न के चवंदी भली कार खुशामदीद।

0: जी जनाब, ॾिसंदासीं त कॉल ते असां वटि केरु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, केरु साहिब ऐं किथां खां? अलहमदुल्ला जिस्कानी साहब, तव्हां ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला.
1: रब जा एहसान आहिनि, सभु ख़ैर लॻो पियो आहे. मीरपुर ख़ास जी नशरियात बंदि थी वई आहे, साईं खे ॿुधायां.
0: अच्छा, कंहिं सबब जे करे? शायदि बरसाति जे करे थी वई हूंदी.
1: हा, बरसाति जे करे थी आहे, उनजे करे साईं मुंहिंजो साईं खे ॿुधायां या ख़बरचार ते.
0: चलो चलो,
1: साईं
0: साईं हाज़ुर हाज़ुर हाज़ुर, महिरबानी तव्हांजो लक तौर. ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: हलो
0: जी जी, शुक्र आहे. केरु साहिब ऐं किथां खां? जी जी, वाजिद चांडियो साहब. जी वाजिद, छा हाल आहिनि? ठीकु आहियो, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो. अलहमदुल्ला, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी जी, शुक्र अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई. उहे जनाब साज़ ऐं आवाज़ साथ में अवां जूं कॉल्स 0334-3525-786 ते ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु आहे. सो अवां जॾहिं कॉल कयो था त बिल्कुलु तव्हांजी कॉल जो असांखे ओसियड़ो हूंदो, ओसियड़ो रहंदो त केरु केरु हूंदो जेको असांखे जॉइन करे थो, त पोइ तव्हांजी कॉल अचे तेसिताईं हिकिड़ो ट्रैक था वठी वठूं. ज़बरदस्त ट्रैक आहे, अचो त गॾिजी ॿुधूं ऐं इन दौरान जेको कॉल ईंदी हुनखे बि रिसीव कंदासीं. सो कॉल ते ॾिसंदासीं हाणे असां सां गॾु केरु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम. हलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, केरु साहिब पिया ॻाल्हाइनि? छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो साईं, सखर जा कहिड़ा हाल आहिनि? न न, असीं हाज़िर आहियूं साईं.
1: तव्हां जेको आहे मूं ॾेखारियो
0: आहे. अच्छा अच्छा, न न, हाणे प्रोग्राम में कंटिन्यू मां ईंदो आहियां सूमर ऐं अंगार ते.
1: ॿियो
0: सभु ख़ैरु आहे अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे. तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? अच्छा, वालेकुम असलाम, वालेकुम असलाम, थैंक यू वेरी मच साईं मीराणी साहब, महिरबानी लख थोरा तव्हांजा. जी जनाब, साज़ आवाज़ साथ में यूनिस बकारी जो साथ निभाईंदड़ समूरनि मौज़िज़ समातुनि जूं महिरबानी हुयूं जेके असांखे गौर सां प्यार सां पंहिंजा पैसा ॿुधनि था. अवां जा वॾा वॾा ऐं अवां जा अहसान हमेशह यादि रहंदा. दीपा शहर जो आवाज़ हवन में गूंजे थो, सजण खे विसारण ॾुखियो थी पियो. अॼु त गॾिजी ॿुधऊं हिकिड़े ट्रैक हिकिड़े ब्रेक खां पोइ अवां जे कॉलनि समेत शामिल थींदासीं. नंबर नोट करे वठो 2334-3525-786. इन नंबर ते अवांजी कॉल पहुचंदी, ज़रूरु शामिल कंदासीं.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराय तो जवाबित लागू हैं।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद जी FM 88 रेडियो नेटवर्क की पेशकश सिंधड़ी जी शाम है सिंधड़ी शाम जो सलाम यूनिस बकारी अवसर मुखातिब है आर जे अवसर दिल जी गाल हलन पे सो जनाब अगर कॉल कर चाहो था शामिल थे चाहो था तो जल्दी से नंबर डायल कर वो नंबर है असो 0334352578 इन नंबर से तक कॉल कॉल से ऐसा केर हों गड उन कॉल कदी शामिल हलो असलामकुम साई शुक्र अलहमदुल्ला केर साहब किथा का जी जी
1: दिल अंदर दरिया मन अंदर मौजू कदे कदे होजू न त सदाई सिकम
0: वाह वाह वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त साईं
1: साईं नाज फकीर मोहम्मद जलालानी आरजे रेडियो नेटवर्क झोल
0: मेहरबानी मेहरबानी नाज साईं भली कार वेलकम चंदा सी तांगे वेलकम साईं वेलकम तभी केर पे बुधे
1: साईं मुझा साथी रोस्तम पावर गुलाम रहीम बलोच चोवन कुमार कोहली कुर्बान खास कैली रोशन अली पावर या जेके भी सिंध या साथी मुझे बुधन ताला साईं सबन के शाद व आबाद सलामत रखे
0: मेहरबानी मेहरबानी थैंक यू साईं खुश हो जो आबाद हो जो मेहरबानी ओके जनाब ये जी FM 88 रेडियो नेटवर्क अवसान गाल हलन पे मोहब्बत क्यों प्यार जो पेंजाए पे जो अवाम जो शामिल थे चाहो था मोहब्बत वाली महफिल में तो हाँ ही कॉल कर 0334352578 कॉल से रब्त कर हलो असलामकुम जी अल्लाह जी बंदी।

0: अच्छा जी बिल्कुल ॿुधाईंदासीं तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी इनशाला तव्हां कोन को फ़ाइज़ा इहो ट्रैक ॿुधाईंदासीं ॾिसंदासीं त कॉल थी केरु हलो अस्सलामु
1: وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے خوش آئے ہو
0: شکر الحمدللہ دعا لگی پے کیر صاحب ہیں کتھاں کھاں
1: جی گوٹھ بابو ویرو تھر پار کر کھاں دلیپ کمار میگواڑ
0: دلیپ کمار میگواڑ صاحب خوش آئے
1: جی جی اللہ جو شکر ہے تھدی کچھ موسم تھی ہے نہ صبح جت گرمی کل گرمی ایڈی ہے جڑی اکھ جی کان جی اکھ دے نکئی
0: اچھا اچھا اچھا ہن کیر پیو گڈ بدے تاں سان
1: रुस्तम अली पवार मलक मोहम्मद बलोच मोहम्मद ताले लगारी रामचंद मकवाणा प्रेमा लगारी मुंहिंजा भाउ आहिनि बाबू रखा नवल राय दानिश कुमार सूरज गुल शंकर लाल मेघवार
0: किरोड़े कुर्ब साईं किरोड़े कुर्ब हाणे ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी शुक्र अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां
2: सर सैयद इमदाद अली शाह बुखारी फ्रॉम सांगी शहर ज़िलो सखर तालुको पनवाकिल
0: साईं सैयद इमदाद अली शाह बुखारी साहब वेलकम था चऊं तव्हांखे भली कार साईं
2: साईं महिरबानी कुर्बल लख थोरा तव्हांजा बि ख़ैरा ख़ुशि आहियो त बि ठीकु आहे लॻा पिया आहियो तव्हांजी टीम बि ख़ुशि आहे
0: अलहमदुला अलहमदुला अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
2: मिठा माण्हू असां सां गॾु तव्हां मोहम्मद बचल छपाणी आहे
0: जी जी
2: ऐं उन खां अलावा रियाज जिस्कानी आहे ऐं ग़रीब नवाज़ जांवरी आहे ॿिया खैपुर में जिते जिते दोस्त ऐं सिंध में जेसि ताईं तव्हांजो आवाज़ वञे त जेके जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनि किंदा अली शाह जा सलाम पर
0: महिरबानी साईं लख थोरा था
2: ॿियो अर्ज़ु आहे ॿियो हिकिड़ो अर्ज़ु अथव
0: हुकुम करियो
2: चमन मीरा जो गानो यार ॿुधाई वेंदो पर काफ़ी टाइम खां पोइ तव्हांखे रिक्वेस्ट कई आहे त किथे रहियो घर किथे रहियो दर पंध थो कराए यार जो सिर
0: एक्चुअल असांजे प्रोग्राम जे फॉर्मेट मूजिबि हिकिड़ो कलाम हिकिड़े शो में हिकिड़ो दफ़ो हलाईंदा आहियूं इन जे करे ईअं आहे त असां चमन साईं खे प्ले करे चुका आहियूं इनशाला ॿिए प्रोग्राम
2: में किरोड़े
0: कुर्ब किरोड़े कुर्ब शाह साहब किरोड़े कुर्ब ओके जनाब सादे आवाज़ साथ में असां सां गॾु केरु हूंदो ॾिसंदासीं कॉल ते हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब ऐं किथां खां
3: मोहम्मद बलोच ॻाल्हायां पियो मिठी थरपारकर खां
0: छा हाल आहे बलोच साहब ख़ुशि आहियो अलाह साईं करे त इहे रहमतियूं बरसातूं तव्हां ते वसंदियूं रहनि आबाद हुजे शाद हुजे
3: जेके हर ऐं काठे जा माण्हू हूंदा आहिनि जेके बरसाति वसंदी आहे त हुनजी ख़ुशी जेका आहे उहा माना डबल थी वेंदी आहे
0: बिल्कुलु बिल्कुलु अलाह साईं कंदो ख़ैर वारी बरसाति बरसंदी रहंदी अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे बलोच साहब
3: ऐं दिलीप कुमार रोशन पवर मोहम्मद सिद्दीक फारूक रामचंद मकवाणो जेके दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी खे
0: वालेकुम असलाम वालेकुम असलाम ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
4: हलो सलाम खां
0: वालेकुम असलाम केरु साहब ऐं किथां खां जी नालो ॿुधायो वरी रिपीट करियो महिरबानी तव्हांजो तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे अच्छा शायदि कॉल तव्हांजी सिग्नल घटि हलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां केरु साहब ऐं किथां खां हलो आवाज़ कटिजी वियो शायदि ऐं नालो ॿुधाइण खां अॻु में ई आवाज़ कटिजी वियो आहे इन जे करे ब्रेक वठी वठूं हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक आहे जेको गुंजे थो हवाउनि में ऐं ट्रैक खां पोइ बिना ब्रेक असां वरी मिलंदासीं मुलाकात जारी रहंदी छो त असांजो उनजो साथ अरिड़हनि मिंटनि जो बाक़ी आहे सो अचो त ॿुधूं हिन ज़बरदस्त ट्रैक खे इंजॉय कजो असां सां गॾु रहिजो इन दौरान जेके कॉल्स ईंदियूं शामिल कंदासीं नंबर आहे 0334352578 6 अचो ॾिसूं केरु हूंदो असां सां गॾु पर हुन केरु हुजण खां पहिरीं ही ॿुधूं था ट्रैक

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत जवाबित लागू हैं.
3: मातली आस पास की अवाम अलै खुशखबरी. मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी, उहा बेडी घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताई. नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली. राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163.
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
5: GAFM 88
2: नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़.

0: वेलकम बैक मज़ी सामीन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क तुम यूनिस बकारी मुखातिब है तुम तमाम घड़ी मोहब्बत भलीकार जी जी मेहरबान असा ज्वाइन कर चुका है उनके आखिरी लम्हात में भलीकार चाहिए आखिरी दहन बारह मिनटन के साथ में अगर केर साथ निभाई उन कॉल अटेंड क्यों था हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी केर साहब है किथा का आवाज अचे पियो हलो अच्छा जी आवाज कंधो अचे शायद नेटवर्क इशू हों दिसंदी हाँ कॉल से केर हलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब आवाज अचे तो शायद आवाज कंधो अचे ताकि बलिकार चौंदी सिंधड़ी शाम जैमें आए सिक भर सलाम सो दोस्तों मेहरबानों के दरदानो भेनरों भाइरों अवा जैसे शहर वायण बस्ती बस्ती में बुधो था ताजो मोहब्बतों इन अवे चौंदी भलीकार खुश हो आबाद हो अब्दुलरहमान लगारी लुटको मोरी क्या बुधे तो मेहरबानी मिठा खान लगारी तालिब हुसैन लगारी अवज भी तमाम घड़ी मेहरबानी वा वा वा जो अवे ज्वाइन किया कॉल से दिसंदी तो केर है कॉल से अटेंड क्यों था हलो अस्सलाम वालेकुम अजीज सोलंगी साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला अलहमदुल्ला दुआ लगी पई है तुम सा केर पे बुधे
1: साईं वफा गुलाम रहीम बलोच कुर्बान खास केली अजीज जरवार खालक लाचारी तो इकबाल लाचारी
0: वालेकुम असलाम मोहबतियूं मोहबतू साईं ओके जनाब हाने दिसनासी त कॉल ते केर आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: बिल्कुल यूनिफॉर्म नोटे जे नगरी का आमिर
0: छा हाल है फकीर आमिर जिंजी खुश आयो ठीक आयो
1: हाँ मालिक मिठे जा किरोड़े करमाना अल्लाह पाक दे एहसान आ जे असा के तमाम तमाम घणी खुशी आ जो असा जे थर के इलाके में अल्लाह पाक राजी जो रहमत जा चक्कर वसायांस
0: जी जी जी जी
1: हाँ तमाम घनी खुशी थी रही है जो बिल्कुल थर के इलाको एडो एडो तकरीबन असाजे लोट के बरपाचर इलाके में सदी सदी हवा की लहर हली रही है बरसात तमाम सुठी पैदी रही है
0: तमाम घनी मेहरबानी मोहब्बत अवे दुआगू आयु साई
1: साईं तमाम तवाजी मोहब्बत प्यार है वरी तवाजी नशरात जो प्यारो मिठड़ो आवाज है तवाजो मना प्यारे में प्यारो आवाज बुधू पा
0: मेहरबानी मेहरबानी अवाजी मोहब्बत अवा सा गड़ी केर तो बुधे साईं
1: बिल्कुल मुझा दोस्तान रामचंद कुमार मकवानो है दिलीप कुमार है मोहम्मद सिद्दीक पारो है मुझे नड़ो भाइटो अली अहमद तवाजो बुधे तो दुआ सलाम दे पो
0: किरोड़े कुर्ब सभी सभी जो मेहरबानी अली अहमद के वालेकुम सलाम खुश हो आबाद हो ओके जनाब साज आवाज के साथ में आखिरी लमात्रा बदने का पेरी एकड़ो मिठड़ो आवाज हवाओं में गुंजे तो उन आवाज के अमीब कनाए सको बुधी सको ये आवाज जलाल चांडी जो है जो सदाबहार आवाज है जडे भी गूंजो सारी सिंध में मोहब्बत जो आवाज जितोणी सारी सिंध सारी दुनिया सारे पाकिस्तान में जिते जिते भी ये आवाज बुधो वो या गूंजो उते मोहब्बत मीह वठा सो अवां सभी के भलीकार चवंदे कॉल अटेंड कंदासी हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: सर सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम केर साहब है किथा
1: का
0: बशीर अहमद चांडू साहब वेलकम चवंदासी तव्हांखे भलीकार महिरबानी अवां सां गॾु ॿियो केर थो ॿुधे जी जी
1: फहीम चांडियो
0: जी जी
1: बाबर चांडियो
0: जी
1: जेके
0: वालेकुम असलाम खुश हुजो साईं महिरबानी ॾिसंदासीं कॉल ते केर हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम सर
0: जी केर साहब ऐं किथां खां जी चांडिया साहब बि तव्हां सां गॾु केर बि ॿुधे
2: मुंहिंजा दोस्त आहिनि कुझु ॿाहिरि आहिनि मुमताज़ चांडियो जूनूस चांडियो
0: जी जी
2: साईं चांडियो बशीर चांडियो
0: महिरबानी महिरबानी साईं लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम अदा
0: जी केर साहब ऐं किथां खां
3: मिठा माण्हू कुर्बान अली ख़ासकरी थो ॻाल्हायां घोट आहे गुलाम ख़ासकरी घटि उमिरि यूनस भाउ
0: जी छा हाल आहे कुर्बान ख़ासकरी साहब ख़ुशि आहियो
3: अला जा इशार ॿाहिरि जी दुआऊं बरसाती रुत जो सफ़र ऐं चारई पासे गजगोर जारी बादलनि जो रवां तव्हां तव्हांजो आवाज़ मिठड़ो ॿुधूं था ॾाढी ख़ुशी थिए थी खेड़ जा चंत
0: नवे वगे टाइम बस हाँ वक्त वक्त का वक्त ताई जीणो है हलणो है रहणो है रोजी रोटी एसी ताई हुई
3: बिल्कुल यो ठीक आने पुजींदे भी देखो बरसा दी कला थी वने दवावा थी
0: हाजिर हाजिर हाजिर हाजिर साईं हाजिर
3: तो पुदन पर हां
0: साईं नाला वठी उठो जल्दी जल्दी टाइम तमाम घट है
3: काठरी का गोदाम रसूल मरी अजी कलकी काल कलाचारी अजी यो अजी जरदार बैठी दो सब तेरे सदन सलाम है देखा है एटी एट बार दोस्तन के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देर तक कन्वर्ट करना
0: हां ठीक है मेहरबानी सर मेहरबानी जी जनाब रिश्ता सीधे कॉल थी केर आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम बल्कि कॉल ड्रॉप थी वही है जलाल चांडियो साहब जो आवाज तो पुजाणी थी पहुंची वयो आहे आई हाणे आवाज आहे केड़ी लगी थी कस जानी मुखे दस आई यो आवाज अमीब सुजानदा हुंदो यकीनन छकाण जो जग मशहूर आवाज आहे फायजा अली जो आवाज आखिरी ट्रैक हों जो कि शो में ऐसी कॉल ते आखिरी लमात में केर गद जी जनाब हलो अस्सलाम वालेकुम बल्कि कॉल ड्रॉप थी वही है शायद सो कॉल ड्रॉप थी वही तो पान छा कंदासी एक दफो कॉल के अटेंड करने की कोशिश कर हलो अस्सलाम वालेकुम साईं केर साहब किथा का अयाज अली भुट्टो साहब के भली कार चवंदी लाड़काने के थदे ने सुठी हवाओं में याद किया अयाज अली भुट्टो साहब तुम
3: केर
0: भी
3: अलहमदुल्ला
0: अलहमदुल्ला तक भी केर भी बुधे जी जी
3: भुट्टो
0: जी जी
3: हफीज भुट्टो
0: जी जी
3: भुट्टो
0: जी जी
3: दोस्त लाड़काने में
0: जी जी
3: अब्दुल गनी अबड़ो हलीम अबड़ो
0: जी जी
3: मजीद शर
0: किरोडे कुर्ब साईं सबनी दोस्तन यू मेहरबानी वहां जो स्पेशल मेहरबानी थैंक यू हांडे सांस कॉल दे के हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम केर साहब है किथा का
4: अजनेर दरगोर जाम था माने दा का
0: जी जी
4: जो खैर आयो खुश हो अमन बाहर हो
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वही दुआ लगी पे तवा सके भी केर पे बुदे वालेकुम अस्सलाम हाँ कॉल केर हलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केर साहब है किथा का
5: आखिरी लम्हात में इरफान अली थे वो गुलाबी संगत खबर भी तालका साले पट खां
0: जी इरफान अली थे वो साहब लखत हो रहा था देर से पर खैर से ज्वाइन कर अवां त कदी भी केर पे बुधे
5: सलाम सिस्टर मिसिस अली रायत सुमरो मंता सुमरो हाफिज गुलाम अहमद कामल हुसैन बचिस्तर बसन शम्बानी नजीर मंगरे लुकमान चाचा अब्दुल्ला बंगवार जेके तो सबदन ता सबनी के इरफान अली के बारा खुला सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम किरोडे कुरबे दिसनासी हाणी कॉल दे के रहलो अस्सलाम वालेकुम
6: वालेकुम सलाम
0: साईं केर साहब है किथा का
6: साईं मिठा मानू रंजन कोरी नीरपुर खास कोरी गोठ
0: छा हाल है रंजन साईं खुश आयो ठीक आयो अल्लाह पाक दुआ लगी पे है केर पे बुधे
6: बुधे जो डॉक्टर फरहान डॉक्टर लालचंद
0: जी जी
6: फराज जो मुझे भेण लाल मामन कोरी
0: जी जी
6: न्याज जूने जो अली जूने जो इमाम बख्श जूने जो जान जूने जो
0: जी जी मेहरबानी सर मेहरबानी लख थोड़ा ऐसा कॉल ते केर हलो अस्सलाम वालेकुम ओके जी कॉल ड्रॉप थी वही है अगे जो इशारो अचे यूनुस बकारी हलो वे साज आवाज साथ जी अजोकी पुजाणी थी थी हयाती रही मेलो मचंदो वरी बवा से मुलाकात थी सो मौजिद सामईन यकीनन प्यारे पंजाब के रंगन के खूबसूरत हवाओं में विखेर ईंदे अवां जो यूनुस बकारी वञण चाहे तो जब भी चाहो मुझे बुला लो मैं गया हुआ वक्त नहीं कि फिर लौट के ना आऊं ऐं वरी कंहिं उर्दू जे शायर हीअं चयो, खुदा के वास्ते अब बेरुखी से काम न ले, तड़प के फिर कोई तेरे दामन को थाम न ले, जमाने भर में है चर्चे मेरे तबाही के, मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई तेरा नाम न ले। ऐं वरी सिंधीअ में शायर चयो, ईअं नाहे त तो सवाइ जी न सघबो, पर ईअं आहे जीअं तो सां थी के ॿिए सां रही न सघबो। चङो यारो यारी मोकिलाए थो यूनुस बकारी इन दुआ सां, त जिते तव्हांजो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे। उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमन जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं तव्हांजो मुक़दरु बणजनि। साथ सलामत, सिक सलामत, अलाह निके पान।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: स्पेशल कमेटी में प्लीज प्रेजेंट द रिपोर्ट. सर, आई राइज टू प्रेजेंट द रिपोर्ट स्पेशल कमेटी ऑन लोकल गवर्नमेंट बिल नंबर 32 ऑफ 2026. द सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडेड बिल 2026. तो इन्होंने सपोर्ट किया है बिल को, एक्सेप्ट फ्यू इश्यू, और टोटली बिल को इन्होंने सपोर्ट किया है. अब ये बहाना बनाकर इस पर बिजनेस को ओवर रूल करवा रहे हैं. सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडेड बिल 2026 मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द असेंबली एट वंस.
4: लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द असेंबली एट वंस. नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. दोज हु आर इन द फेवर में से आए एंड दोज हु आर अगेंस्ट में से नो. आई देव इट एंड द मोशन इज कैरीड.
5: काउंसिल जो मुद्दो खत्म थियण ते मेयर ऐं चेयरमैन ई एडमिनिस्ट्रेटर जा अख़्तियार संभालींदा. डेप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन खे काउंसिल जो कन्वीनर मुक़रर कयो वेंदो. यूसी चेयरमैन गैर कानूनी अदावतुनि जी निशानदेही करे SBCA खे एतिरा ॾियण जा पाबंद हूंदा. सिंध असेंबली अपोज़िशन जे गोड़ दौरान मकानी कानून में तरमीम लाइ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2026 अक्सरियत राय सां मंज़ूर करे वरितो. बिल में सुलह वारे फोरम जो इज़ाफ़ो, 90 ॾींहनि अंदरि फोरम क़ाइम करण लाज़मी हूंदो. सुलह वारो फोरम अवामी मसलनि जे हल लाइ पुलिस सां राब्तो करे सघंदो. मकानी इदारा इलेक्शन कमीशन खे मुदो मुकमल थियण खां 120 ॾींहं अॻु चूंडू कराइण लाइ ख़त लिखंदा. बिल जी मंज़ूरी दौरान मुख़ालिफ़ धुर पार्टियुनि जो सख़्त एहतजाज. स्पीकर जे डाइस अॻियां नारेबाज़ी बाद एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं. ऐवान मां बि वॉकआउट.

मुखालिफ़ धुर मकानी कानून में तरमीम पर बिल खे रद्द करे छॾियो। अदालत वञण जो ऐलान। अपोजिशन लीडर अली कुर्शीदी चयो आहे त सियासी आमरियत हली रही आहे। असेंबली सेशन में बिज़नेस खे हिकु तरफ़ करे हिकु तरफ़ो बिल मंज़ूर कयो वियो। सिंध हुकूमत इहो बिल मंज़ूर करे अदालती फ़ैसिले जी बि तोहीन कई। जमात इस्लामी जे मेंबर मोहम्मद फारूक जो चवणु हो त इहो बिल जमहूरियत दुश्मन आहे, जंहिं ख़िलाफ़ अदालत सां राब्तो कयो वेंदो। लोकल बॉडी एक्ट में अख़्तियारी न आहिनि। इन तरमीम ज़रिए सियासी चूंडियल माण्हू चूंड न थियण जी सूरत में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बणिजी वेंदा। पीटीआई मेंबर शबीर कुरैशी चयो त 2023 में हॉर्स ट्रेडिंग ज़रिए मुर्तज़ा वहाब खे मड़ियो वियो हो। वरी उहे ई माण्हू हूंदा त मकानी चूंडुनि में दांधलीअ जो ख़दशो यकीन में तब्दील थी वेंदो। हू इन बिल खे मुकमल तौर रद्द कनि था। सिंध हुकूमत ऐवान में एमक्यूएम जे रवैये खे गैर जमहूरी करार ॾेई छॾियो। सीनियर सूबे वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त हर निज़ाम में बहितरीअ जी गुंजाइश हूंदी आहे। एमक्यूएम अॼु बि पंहिंजी पुराणी रवायत बरक़रार रखी। खेनि ॼाण हुई त अवाम में उन्हनि जी मक़बूलियत नाहे, तंहिं करे मकानी चूंडुनि खां भॼी विया हुआ। पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट जो निज़ाम सिंध खां सवाइ किथे बि नाहे। इलेक्शन कमीशन केतिरा ई भेरा चूंडुनि लाइ लिखियो, पर पंजाब हुकूमत हुकुम हवा में उॾाए छॾिया। सूबाई घरू वज़ीर दयाल अंजार जो चवणु हो त एमक्यूएम जो असेंबलीअ में रवैयो गैर जमहूरी हो। बिल ते एतिराज़ हो त स्टैंडिंग कमेटीअ में मामलो उथारिन हा। सिंध हुकूमत चाहे थी त बलदियाती निज़ाम जो तसलसल बरक़रार रहे ऐं चूंडू वक़्त सिर थियनि। इजलास में एजेंडा पहिरियां ई तय हुई। एमक्यूएम मकानी बिल मंज़ूर थियण खां पहिरियां ज़रूर पढ़ियो हूंदो।

0: कंहिं बि सियासी जमायत वटि इस्लामाबाद जा रस्ता बंदि करण जो अख़्तियार न आहे। सूबनि जा वॾा वज़ीर इहतजाजनि लाइ सरकारी मशीनरी जी इस्तेमाल न थियण खे यकीनी बणायनि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई जे लांग मार्च ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत चयो त कंहिं बि सरकारी मुलाज़िम खे इहतजाज में शरीक थियण लाइ मजबूर न कयो वञे। सूबाई हुकूमतूं इहतजाजनि लाइ सरकारी वसीलनि जो इस्तेमाल थियण न ॾियनि। कंहिं सियासी जमात या अॻवाण खे बि
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
3: जी हा, 2315525786।
6: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: दरिया सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज जी एफ एम 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।